आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: FM 90.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम नमन करते हैं हम अपनी मातृभूमि को, सुनते हैं ये मातृवंदना।

संत मीराबाई की ये रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे संत सूरदास की ये रचना जगजीत सिंह की आवाज में। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली

कार्यक्रम का ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे लखवीर सिंह लखा की आवाज में। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नीलम कटारिया के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज समय गुरु शिष्य संबंध विषय पर डॉक्टर उमा शंकर नगाई जी के ये विचार।
1: प्राचीन काल में शिक्षा प्रारंभ के पूर्व बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन दो शब्दों से बना है, उप धन नयन। उप का अर्थ है समीप, नयन का अर्थ है ले जाना। उपनयन में शिशु को गुरु या आचार्य के पास ले जाते हैं। इसके बाद बालक गुरु के पास ही रहकर पढ़ता था। उपनयन संस्कार का उद्देश्य गुरु शिष्य में तादात्म्य पूर्ण निकटतम संबंध स्थापित करना था। उपनयन के बाद बालकों की शिक्षा दीक्षा, उनके पालन पोषण एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व गुरु या आचार्य का हो जाता था, जिसका निर्वाह वो माता के समान करता था। अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का एतद् विषयक वर्णन विश्व साहित्य में अनुपम है। यथा आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टुमभिसंयन्ति देवाः। अर्थात आचार्य समीप लाए गए बालक को उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार माता शिशु को गर्भ में धारण करती है। उस बालक को आचार्य 3 रात्रि पर्यंत अपने उदर में अर्थात समीप आश्रम में रखता है, जिसे जन्म लेने पर अर्थात शिक्षित होने पर देवता देखने को आते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की ये श्रेष्ठ अवधारणा गुरु शिष्य संबंधों की उत्तमता की पराकाष्ठा है। एक माँ

0: जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु का पोषण रक्षण और संवर्धन करती है, उसी प्रकार आचार्य गुरुकुल में प्रविष्ट शिष्य का पालन पोषण संरक्षण और ज्ञान वर्धन करता है। पुरातन युग में गुरु शिष्य को न केवल ज्ञान देकर सुशिक्षित बनाते थे, अपितु उसे लौकिक जीवन के लिए भी प्रशिक्षित करते थे। गुरु अपने शिष्य को गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए कुशल बनाते थे। वे शिष्य को न केवल धर्म परायण व्यक्ति अपितु उसे एक कर्तव्य परायण नागरिक भी बनाते थे। उसे माता पिता अतिथियों एवं गुरुजनों की सेवा तथा सम्मान करना भी सिखाते थे। शिष्य का आचरण अत्यंत विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता उत्पन्न करती है, तो विनम्रता ज्ञान प्राप्ति की पात्रता प्रदान करती है। विनयशीलता ज्ञान और गुणों के अर्जन के अनेक अवसर उत्पन्न करती है। विनयशीलता के लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को ध्यान में रखते हुए वैदिक संस्कृति में शिष्यों को अनुशासन में रहकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक आचरण करने तथा गुरु के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति रखकर निरंतर उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया है। कहा गया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात शिष्य को गुरु के समक्ष समित पाणी होकर उपस्थित होना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए शिष्य को गुरु के समक्ष जाकर उनके सानिध्य में सम्मान युक्त आचरण करते हुए अध्ययन करना चाहिए। वैदिक विचारधारा और शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध अपने आप में इतने विशिष्ट और अलौकिक हैं कि उनकी तुलना अन्यत्र अप्राप्य है। वैदिक साहित्य में कहीं शिष्य को पुत्र तो कहीं आत्मा से उत्पन्न अर्थात आत्मज कहा गया है। गुरु शिष्य संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है अंतेवासी। शिष्य गुरु का इतना अधिक समीपवर्ती माना गया है कि उसे गर्भस्थ पुत्र तक कहा गया है। वैदिक आदर्श के अनुसार गुरु शिष्य संबंधों में पिता पुत्र संरक्षक संरक्षित आदि सभी संबंध समाहित हैं। गुरु शिष्य संबंधों का ये वैदिक तादात्म्य अनुपमेय है। वर्तमान में शिष्यों तथा संतानों को अनुशासन में रखकर उन्हें सही रास्ते पर चलाना और मर्यादित व्यवहार तथा संयम की शिक्षा देना अत्यंत दुष्कर है। विद्यार्थियों में अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में जब हम आज के शैक्षणिक वातावरण का अवलोकन करते हैं, तो हमें प्राचीन युग की वो उज्ज्वल परंपरा सहसा अविश्वसनीय सी प्रतीत होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत आज का विषय था गुरु शिष्य संबंध, और इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे डॉक्टर उमा शंकर नगाइच। वाचक स्वर थे अरविंद सोनी के। आकाशवाणी का शिवप्री केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण।

भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर थे भूपेंद्र सिंह, ए हरिहरन और साथियों के। आकाशवाणी का यशिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी। आज सुनिए टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर जानकारी दे रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है यहाँ। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों के साथ जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, जैसे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इस सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियाँ या कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जाँच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किनकी कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में, कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं, तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे 10-10-10 या 5-5-5, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास के अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम, वेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटास की आवश्यकता ज़्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटास है उसके हिसाब से टमाटर को पोटास ज़्यादा लगता है, तो पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना आपके फल ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं या स्प्रे भी किया जा सकता है। इनका जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामयिकी। आज का विषय था टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे श्री पुष्पेंद्र सिंह। आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं हमारी स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कुछ ही पलों बाद सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर एक लघु वार्ता सुनिएगा प्रातः 7:05 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा प्रातः 7:10 का, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम काव्य पाठ। 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और 7:45 पर सुनिएगा सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा प्रातः 8:00 समाचार प्रभात, और 8:15 पर सुनिएगा 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर हमारे स्टूडियो से। 9:00 सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से होगा प्रातः 10:00, और 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मेहंदी हसन की गाई हुई कुछ गजलें। फिल्म संगीत का आनंद पुनः लीजिएगा प्रातः 10:30 पर हमारे स्टूडियो से। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से रिले होंगे। संध्या 5:00 सुनिएगा कार्यक्रम युवाणी, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। प्रस्तुति रहेगी रीवा केंद्र की, और 5:33 पर सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। संध्या 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल, और 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश
2: वाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। CBSE परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणं अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकां अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्री पुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
3: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम लघु वार्ता का। आज का विषय है सांप्रदायिक सद्भाव। श्रोताओं, इस देश की अगर सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसा जहर है जिसमें व्यक्ति केवल अपने धर्म, जाति और भाषा की अच्छाइयों को गिनाता है और दूसरों के धर्म की लाख बुराइयां करता है। इससे देश में सांप्रदायिक झगड़ों को बल मिलता है। इसलिए देश के प्रेमी सांप्रदायिक हीन भावना पर ज्यादा बल देते हैं। उनकी हर कोशिश यही होती है कि देश में किसी तरह के झगड़े ना हो। सब धर्म जाति व भाषा के लोग एक थाली में बैठकर भोजन करें, एक साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और जब भी देश पर बाहरी हमला हो तो सब अपने जातिगत धर्म के मिटाकर दुश्मनों के आगे सीना तान कर खड़े हो जाएं। सच तो यह है कि आज सबसे बड़ा देश को खतरा हमारे अंदर की जो सांप्रदायिकता है उसी से है। दुश्मन इस सांप्रदायिकता को और बिगाड़ना चाहते हैं, सद्भावना पैदा करना ही नहीं चाहते हैं, हमारे देश की एकता को अनेकता में बदलना चाहते हैं। इस एकता को दुश्मन सांप्रदायिक तनाव पैदा कर खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश में संप्रदाय के नाम पर ईर्ष्या फैलाई जाती है, दंगे भड़काए जाते हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं की जाती हैं, बर्बरता और अमानवीय प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं, जिसके कारण मानवीय संवेदनाएं चूर चूर हो जाती हैं। सांप्रदायिकता में मानव पशुवत व्यवहार करता है, शांति और सद्भावना की जगह रक्तपात के लिए उतारू हो जाता है और मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देता है। ऐसे में देश का प्रबुद्ध वर्ग समाज में सांप्रदायिक सद्भावना लेकर आता है और लोगों को समझा बुझा कर शांत करता है। ये प्रबुद्ध वर्ग कौन है? ये हम स्वयं हैं। हमें स्वयं अपने आप को शांत रखना है और सद्भावना से अपने देश को आगे बढ़ाना है। असल में हम सांप्रदायिकता का सही अर्थ जानते ही नहीं हैं। जब तक हम राष्ट्र धर्म और संप्रदाय का सही अर्थ नहीं जानेंगे तब तक सांप्रदायिक सद्भावना कायम नहीं हो सकती। असल में संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का नाम है। साधारणतः किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए पंथ को संप्रदाय कहते हैं, जैसे इस्लाम, बौद्ध, शाक्त, वैष्णव, शैव आदि। इसके चलाने वाले कोई ना कोई महापुरुष होते हैं। कोई भी पंथ का संचालक कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता है, ना ही दूसरे धर्म को मानने से मना करता है। पर स्वार्थी समाज अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन विभिन्न पंथ के लोगों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं, जिसके कारण इंसानियत का खून हो जाता है। संप्रदाय पूजा पद्धति है जबकि धर्म नियम है। ये ऐसे नियम है जिनसे समाज संचालित होता है। संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय एक संकुचित विचारधारा है जबकि धर्म विशाल है। ऐसे में अगर देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को उदार बनाना होगा। हमें विभिन्न संप्रदायों की पूजा पद्धति के प्रति आदर भाव दिखाना होगा, इन संप्रदायों की अच्छी बातों को अपनाना होगा, विचारों में मतभेद दूर करने होंगे, तब देश में सांप्रदायिक सद्भावना कायम होगी और इसी भावना से देश उन्नति करेगा। मजहब में सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, यह हमें याद रखना है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बस इस धर्मगत और जातिगत भेदों को मिटाकर हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है और इंसानियत के नाते हमें अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना है और उसे आगे बढ़ाने में, उसको उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में हमें सदा अग्रसर रहना है। इसी भावना के साथ अपने देश को

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक, 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रदेश में गृह विभाग ने 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए और मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों में आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रमुख हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए गए और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ। शाम को प्रधानमंत्री ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ साथ नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रयास किया गया।
2: हम अपने किसानों का जो एक साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ

0: 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं।
1: प्रदेश में गृह विभाग ने कल 8 आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ और उनकी पत्नी अनु बेनीवाल दोनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर जबलपुर भेजा गया है। वहीं नरसिंहगढ़ की एसडीओपी मिनी शुक्ला ने शुक्ला को पदोन्नत कर भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। धार के पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली की शकूर बस्ती डिपो में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहाँ 300 करोड़ रूपये की लागत से विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सागर सांसद डॉ लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ट्रेन सेवा सागर के विकास को नई गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान से अब तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। सीबीएसई ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। पहली तारीख 6 जून निर्धारित थी। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कौशल विकास मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह साइबर विशेषज्ञ डिजिटल सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने की अपील की है। प्रदेश में शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये कुनू में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 7 खिलाड़ियों का कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में चयन हुआ है। इनमें संतोष सिंह, प्रिंस गोस्वामी और निहारिका सिंह सहित 5 कैनो स्प्रिंट और 2 पैरा कैनो खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पदक जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल अल्प प्रवास पर बैतूल पहुंचे। सर्किट हाउस में कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। खंडवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष

में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पन्ना जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने की। डिंडौरी में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ कलेक्टर ने माही मुख्य बांध का निरीक्षण कर जल आवक और डैम संचालन व्यवस्था देखी। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में कल रोजगार मेले में 53 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, साथ ही 23.85 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंडला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने उदय चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का निरीक्षण किया। गुना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य पाठ, और इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री सौरभ तिवारी से ये काव्य पाठ।

पंक्तियों से मुक्त होकर झूमता हूँ, शब्द मुक्ता हाथ में ले चूमता हूँ। कौन सा रस है नहीं साहित्य में, है बहुत कमतर प्रभा आदित्य में। ज्ञानदा की वंदना नित कर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ। था सुना अमृत में ही अमृत्व है, सुच विचारों की प्रकट देवत्व है। मैं सुधा साहित्य उर में धार कर, स्वार्थ की सीमाएं सारी पार कर, आदमी से खुद को मानव कर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ। जो हुए अब कर्म सब मिट जाएंगे, अब गुणों के ढेर सब घट जाएंगे। आवागमन के फेर से बच पाऊंगा, शब्द दो अनमोल यद रच पाऊंगा। मोक्ष की कुछ योजनाएं कर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ, गीत में रंग भर रहा हूँ। आत्मा परिशुद्ध करने के लिए, आत्मा परिशुद्ध करने के लिए, हाँ स्वयं को बुद्ध करने के लिए। काव्य सरिता में सदा स्नान कर, देह को नश्वर निरर्थक मानकर, मैं आत्मा का आत्मतर्प

मैं मन का कोलाहल लिख दूं, मैं मन का कोलाहल लिख दूं, या लिखूं चीखता अंतर्मौन। मैं मन का कोलाहल लिख दूं या लिखूं चीखता अंतर्मौन, अरे लिखने को हर आह भी लिख दूं, पर मेरा लिखा पढ़ेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन। और रोम रोम की लिखूं वेदना, संवेदी शीतल गान लिखूं, यदि लिखने पर आ जाऊं तो टूटे सब अरमान लिखूं, अरे जागी हर एक रात लिखूं तो मेरे स्वप्न बुनेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन। और बिखरी बिखरी लिखूं तमन्ना, बिखरी बिखरी लिखूं तमन्ना, जीवन के कटुताप लिखूं, और अपने हाथों सिले जो मैंने दिल के सारे चाक लिखूं, नीर छीर दोनों लिख दूंगा, पर इनको पृथक करेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन। और हर्फ हर्फ में सिसकी लिख दूं, हर्फ हर्फ में सिसकी लिख दूं, अटल अचल विश्वास लिखूं, और कदम कदम पर किया जिन्होंने उनका हर उपहास लिखूं, तंजों के जो दंश नुकीले दिल में चुभे चुनेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन। अपने मन की निर्मलता के सारे साक्ष्य लिखूंगा मैं, दर्पण जैसे परम सत्य सी सारी बात लिखूंगा मैं, पर मेरे पावन आलेखों को अजी अंगीकार करेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन, मेरा लिखा पढ़ेगा कौन। और जिसने चाहा उसके जैसा हाँ बिल्कुल ढल सकता हूँ, और जिस पथ पर तुम चलने कह दो मैं खुशी खुशी चल सकता हूँ, मैं मूरत सा ढल जाऊंगा पर मेरे साथ

कार्यक्रम के शिवपुरी केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य पाठ, और इसके अंतर्गत आज के कवि थे श्री सौरभ तिवारी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म आवारगी का ये गीत आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में। गीत अनिम बख्शी का था, संगीत अनिम मलिक का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बागी से।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बागी से, आवाज थी अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, गीत संगीत का था संगीत आनंद मिलन का। कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार शिवप्री। नमस्कार शिवप्री कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री में। और आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति। श्रोताओं, हर दिन की शुरुआत हम एक नए विचार के साथ करते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जीना, हाँ जी, जब तक हम जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से हमें अनुभव भी मिलता है और जो हम गलतियां करते हैं उनके लिए हम आगे सतर्क भी हो जाते हैं। इसलिए जो इंसान सीखता है वही गलतियां भी करता है, तो गलतियों से हमें सीखना है और उन गलतियों को बार बार नहीं दोहराना है।

और उन गलतियों से ही हम अनुभव जो लेंगे वो हमारे लिए संपूर्ण जीवन में एक शिक्षक की तरह हमारे काम आएगा। तो श्रोताओं, हम तो यही कहेंगे कि जीवन में जिंदगी भगवान ने दी है तो उसको पूर्णतः उसको जिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया। हर जिंदगी के मोड़ पर जिंदगी हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, तो उन को सीखिए और उनसे अपनी गलतियों का एहसास कीजिए और अनुभवों को आगे बांटिए। श्रोताओं नमस्कार, शिवप्री कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको देते हैं समाचार पत्रों से प्रकाशित कुछ खास खबरें। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल विश्व पर्यावरण दिवस था और इस अवसर पर शहर, प्रदेश और पूरे राष्ट्र में पौधारोपण किए गए। श्रोताओं, ये सिर्फ एक दिवस की बात नहीं है, पौधारोपण करना, नए पेड़ लगाना, यह हमारे लिए एक आदत बनना चाहिए। हमारे घर में जब भी कोई जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या कुछ भी नया आयोजन हो तो हमें एक पौधा, एक पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए। और उसको सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है, उसको पलते हुए देखना है। जैसे हम अपने बच्चों को पलते हुए, बढ़ते हुए देखते हैं और खुश होते हैं और उनके लिए वो सब करते हैं जो उनको अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वैसे ही हमें अपने पेड़ पौधों के लिए भी हमें उनके प्रति सतर्क रहना है और उनको बढ़ते हुए देखना है अपने बच्चों की तरह। तो इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इसमें पहली बार पटल विकास समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पंचवटी में रक्षा सूत्र बांधा गया। खास बात यह रही कि इस दौरान पंचवटी के फेरे लेकर रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया गया। इस अवसर पर समाज सेवी परमेंद्र बिरथरे सोनू, पटेल विकास समिति के अशोक अग्रवाल, भूपेंद्र शर्मा, पार्षद पंकज महाराज, दिगंबर जैन सहित आदि की मौजूदगी रही। मेडिकल कॉलेज में भी एक पौधा मां के नाम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन शिवप्री इकाई ने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत किया गया। कार्यक्रम में शिवप्री मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर डी परमहंस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ऐसे ही कई कार्यक्रम हमारे शहर में किए गए और शहर के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। श्रोताओं, मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को, जी हाँ, नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जून को होना था। श्रोताओं, राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
संयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 से 8 जून तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 कार्यालयों संस्थाओं का चयन कर सकेंगे। बिजली मेंटेनेंस के चलते लोगों को बिजली गोल होने की समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस के कार्य किए जाने हेतु 33 केवी लुकवासा, 33 केवी बदरवास एवं 33 केवी चंदोरिया फीडर एवं 11 केवी बड़ा गांव फीडर पर 6 जून को यानी कि आज विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। 33 केवी बदरवास, चंदोरिया और लुकवासा फीडर के बंद रहने से प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 33 और 11 केवी उपकेंद्र बदरवास, लुकवासा, श्रीपुर, केलधार से जुड़े समस्त क्षेत्र 33 और 11 केवी उपकेंद्र चंदोरिया, रमतला तथा 33 व 11 केवी उपकेंद्र देहरादा सड़क लुकवासा एवं केलधार से जुड़े समस्त क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। इसी प्रकार 11 केवी बड़ा गांव फीडर पर RDSS का कार्य किए जाने के कारण सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक संबंधित क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। जून तक अपार आईडी का निर्माण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं बीआरसीसी को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपार आईडी का 100% निर्माण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए 1 जून से 30 जून 2026 तक प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस आयोजित किया जाएगा। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालयों में आमंत्रित कर नामांकन एवं आईडी निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। विकासखंड स्तर पर अपार आईडी विहीन विद्यार्थियों की विद्यालयवार सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। श्रोताओं, ये तो थी समाचार पत्रों से जुड़ी कुछ खास खबरें। आज के मौसम की जानकारी इस प्रकार है। श्रोताओं, आज दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रोताओं, एक खबर और हम आपको दिए देते हैं। बिना नंबर प्लेट के 20 दोपहिया वाहन जब्त। एसपी यांगचेन ढोलकर भूटिया के निर्देशन में यातायात नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के मार्गदर्शन में यातायात थाना प्रभारी ने शहर के विभिन्न चौराहों पर जांच की। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध पाए गए 20 दोपहिया वाहनों को जब्त कर यातायात थाने लाया गया। इसके बाद संबंधित वाहन चालकों से वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाई गई और चालनी कार्रवाई भी की गई। इसलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि बिना नंबर प्लेट के अपने वाहन नहीं चलाना है और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, क्योंकि हेलमेट लगाना हमारी स्वयं की सुरक्षा भी है और हमारे साथ जो बैठा है उसकी भी, और ये हमारा एक दायित्व भी है कि हम स्वयं हेलमेट लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों से भी ऐसा करने को कहें।

श्रोताओं, इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति कार्यक्रम को यहीं समेटने की। कल पुनः मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ प्रातः 7:45 पर। तब तक जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार। स्यूप्टी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए

0: 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
7: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांति दूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
9: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था

0: nice day.
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और गीतों के इस सफर में मैं आपके साथ हूँ ज्योति। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म खून भरी मांग के इसकी।

मेरी मांग। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी साधना सरगम सोनाली और साथियों की। गीत इंदिवर का था, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत की फरमाइश हमें भी की थी विवेकानंदपुरम शिवपुरी से राजेंद्र सिंह तोमर, शिवांगी तोमर, अभिजीत सिंह तोमर, शैलेंद्र सिंह परियार ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता इंदिरा कॉलोनी शिवपुरी से सुरेंद्र राजपूत, प्रीति राजपूत, स्नेहा, अंशुमन, निधि, राहुल, रोहित, गीतेश, खुशबू, सोनिया, तानिया एवं समस्त राजपूत परिवार ने। आशा है आपको आपने अपना गीत सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है फिल्म खूबसूरत का ये गीत सुनना चाहते हैं। आशा भोसले की आवाज में गीत गुलजार का है और संगीत आर डी वर्मन का।

आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म खूबसूरत से। गीत गुलजार का था, संगीत आरडी वर्मन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता था नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश, फिल्म खुदगर्ज।

0: साधना सरगम, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म खुदगर्ज से। गीत इंदिवर साहब का था और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, बसीद बसीम नूरजहां, बली उल्लाह नूरजहां ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिवा तिवारी ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म किंग अंकल से। गीत इंदिवर साहब का था और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था विवेकानंदपुरम शिवपुरी से प्रीति राजे, पिंकी राजे, सोनू, सुषमा, आशीष और समस्त राजे परिवार ने। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम

फिल्म कोहरा का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे और संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत को सुनना चाहा था मानी सागर कॉलोनी शिवपुरी से धर्मेंद्र सिसोदिया, प्रीति सिसोदिया, शिवानी पारुल और युवराज ने। कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे प्रातः 9:30 पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज ने अशोक कुशवाहा और साथियों के साथ ही ममता गोस्वामी के गाए हुए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अशोक कुशवाहा और साथियों के गाए हुए इन लोकगीतों के साथ।

अभी आप सुन रहे थे ये बिलबारी गीत। आज के कलाकार हैं अशोक कुशवाहा और साथी। कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत, अशोक कुशवाहा और साथियों की आवाज।

0: अभी आप सुन रहे थे ये डिमरिया लोकगीत। आवाजें थी अशोक कुशवा और साथियों की। कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आप सुनिएगा ममता गोस्वामी की आवाज में इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे ये लोक भजन, आवाज थी ममता गोस्वामी की। कार्यक्रम के इस अंतिम लोक भजन के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की पहली फरमाइश सुनिए, फिल्म आखिर क्यों से।

कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत आप सुन रहे थे फिल्म आखिर क्यों से। आवाजें थी लता मंगेशकर और अमित कुमार की। गीत इंदिवर साहब का था और संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी पौरी चौरा शिवपुरी से राजेंद्र सिंह तोमर, शरद शर्मा, संतोष गोस्वामी, शेखर सोनी, सोनू बंटू, सतीश, अनिल और उनके साथियों ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म आंसू बन गए फूल से।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आंसू बन गए फूल से। गीत गोविंद मुनीस का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की थी चिरमली कुरासिया कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह और राम सहुदर ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता लाल माटी शिवपुरी से अर्चना जादौन रचना जादौन शिवा श्वेता सलोनी सौम्या रुद्र और समस्त जादौन परिवार ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आई है

पटेल नगर मलूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत।

प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में, बोल एसएच बिहारी के थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, आपकी कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी 473551 पर। तो जिन श्रोताओं ने अभी तक हमें फरमाइश लिखकर नहीं भेजी है वो हमारा पता नोट कर ले, हम कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से एक पता आपको नोट करवाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म राम लखन से।

0: लखन की बात करती हो तुम?
1: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म राम लखन से। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधू, महावीर संधू, गुरुचरण गरोबर और रमेश मिगलानी ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनिए कार्यक्रम की ये अंतिम फरमाइश।

0: कार्यक्रम की ये फरमाइश आप सुन रहे हैं फिल्म साजन से, आवाज में कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पोडवाल की और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इस गीत की फरमाइश की थी मेरा महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी 4735551 पर। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिला इन दिनों विकास, नवाचार और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब जलूद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ग्रीन बॉन्ड और जन भागीदारी मॉडल से तैयार ये देश का पहला सोलर प्लांट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेश्वर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंता को भी प्राथमिकता दी। मंडलेश्वर क्षेत्र के कतर गांव में उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया, किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में विकास कार्यों की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक, विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर खरगोन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जलगंगा संवर्धन अभियान में जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 7188 जल संरचना कार्य किए गए हैं, जिनसे लगभग 617 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहण की संभावना बनी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने इसे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की साझा भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण के अलावा भारत सरकार के नीति आयोग के दिसंबर डेल्टा रैंकिंग में झिरन्या विकासखंड ने मध्य भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो खरगोन यहाँ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। झिरन्या के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस स्पेस लैब से जनजातीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। नवाचार की यही सोच अब पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे रही है। खरगोन नगर पालिका ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरों से अगरबत्ती बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले फूलों से तैयार अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेहरजा स्थित निधिवन परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जिले में मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों का हरे क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। आबाद खेती की आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में कृषि रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई है। जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल लगातार समीक्षा कर रही हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता मत्स्य पालकों तक भी पहुंच रही है। जिले में रात्रि मछुआ चौपाल की अभिनव पहल शुरू की गई है। ग्राम दिचला में आयोजित चौपाल में मत्स्य पालकों को केज कल्चर बीमा योजना और मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति की जानकारी दी गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 174 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊर्जा मिल रही है। देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में नगर गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद और पड़वा सहित नर्मदा नदी के घाटों पर बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का ये शिवप्री केंद्र है FM 100.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई कुछ गजलें।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवभक्ति केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई चंद गजलें।

कार्यक्रम के इस अंतिम गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज आपने सुनी मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें। आकाशवाणी का शुभ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अर्थ फिल्म का ये गीत आपने सुना जगदीश सिंह की आवाज़ में। गीत कैफे आजमी का था और संगीत जगजीत सिंह का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म आवारा।

0: कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म थी आवारा। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जय किशन का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: वैशाख

साहब का है और संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वीर ज़ारा से।

वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत मदन मोहन का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म वास्तव।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का कार्यक्रम सुनीता सिंह की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। ये जो बरसता बादल है, ये जो हहराता सागर है, धरती है धरती है। ये जो घनी छांव है, ये जो नदी बहाव है, ये जो असीम ठहराव है, ये जो सुंदर रचाव है, धरती है धरती है। ये जो जल एक दर्पण है, ये जो हवा में सरगम है, ये जो जल में कलकल है, ये जो नभ में हलचल है, धरती है धरती है। ये जो नील गगन में लाली है, ये जो झूमते परिंदों की टोली है, ये जो बागों में कोयल सी बोली है, ये जो शरद में पावन दिवाली है, ये जो वसंत में बहुरंग होली है, धरती है धरती है। तो आज समय की इसी पुकार को सुनते हुए हमने तय किया कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर, और पर्यावरण बचाने के लिए वो एक छोटा सा संकल्प कौन सा है जिसे आप आज से अपने जीवन में अपनाने का वचन देंगे। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासुदा, जिला विदिशा।
1: भागचंद साहू जी कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: और मौसम कैसा है भोपाल का फिलहाल? अभी
1: मौसम भी बढ़िया है, बादल छा गए हैं तो गर्मी से कुछ निजात है जी। हालांकि बहुत तूफान की वजह से, आंधी पानी की वजह से बहुत पेड़ भी गिरे और बहुत सी बातें हुई, लेकिन मौसम जरूर ठंडा हो गया है। तो भागचंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: दीदी हम तो ये कहते हैं, जैसे ये प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैटरी वाली गाड़ी है वो चलाएं ज्यादातर, वो जो प्रदूषण करते हैं बहुत हानिकारक है। देखो दिल्ली में क्या माहौल है, प्रदूषण के कारण बहुत हालात बहुत गड़बड़ है। हम तो ये कहना चाहते हैं श्रोताओं से कि प्रदूषण ना करें और एक संकल्प जरूर लें, हमें एक पौधा जरूर लगाना है अपने नाम से।
1: तो भागचंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके भीतर एक चिंता है और आपने वायु प्रदूषण की बात की। आप कह रहे हैं कि
2: बहुत बीमारियां चल रही हैं
1: और ये जो वायु प्रदूषण है इससे श्वास संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं।
2: होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऑक्सीजन तो कहते ही हैं कि भाई प्राणवायु है वो, तो उसका स्वच्छ रहना साफ रहना जरूरी है। तो आपका संकल्प है कि आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे, तो कब लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे या नहीं? सिर्फ पौधा लगाना दायित्व इससे पूरा नहीं होता, है ना, वो पौधा बड़ा भी हो। तो भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने एक सार्थक विचार रखा और अपना संकल्प साझा किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संकल्प है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, आपका संकल्प जरूर पूरा हो और कुछ और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा।
2: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद साहू जी, बहुत आभार कि आपने हमें फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हरिशंकर धाकड़ ग्राम आकुर्सी जिला शिवपुरी।
0: हरिशंकर धागड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कितने दिन के बाद आपने फोन किया है?
1: मेरा कॉल तो पहली बार ही लगा है। 4-5 साल से ट्राई कर रहा था लेकिन अभी कॉल लगाया पहली बार मेरा।
0: अरे वाह, मतलब आप हमारे नए श्रोता हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके भीतर किस तरह की चिंताएं हैं और आप कौन सा एक संकल्प आज इस मंच पर रखेंगे जिस पर आप अमल भी करेंगे।
1: पर्यावरण के लिए हमको एक तो साफ सफाई रखना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए।
0: क्या करना चाहिए ये तो बहुत से लोगों को मालूम है ना, लेकिन आपका क्या संकल्प है? आज के दिन से आप कौन सा एक संकल्प लेंगे ये हम जानना चाह रहे थे।
1: मेरा संकल्प यही है कि हम एक हर साल नया पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ पेड़ काटता है उसे मना करेंगे।
0: बहुत अच्छी बात है जी। और प्लास्टिक की
1: हाँ,
0: थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं, कपड़े
1: थैली
0: की
1: का
0: थैली
1: भी
0: का प्रयोग
1: उपयोग
0: करेंगे।
1: नहीं करेंगे।
0: जी, तो हरिशंकर धाकड़ जी, आपकी बातें हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंची हैं और मुझे लगता है कि जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि आप स्वयं तो पौधा लगाएंगे ही, वृक्षारोपण करेंगे, उसे बड़ा करेंगे,
1: हाँ जी
0: और
1: मैडम,
0: जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी एक निगरानी आपकी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करेंगे। कपड़े के थैले वैसे भी हम पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हें दोबारा लाने की
1: हाँ
0: आवश्यकता है। मालूम सबको सब है ना, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम उपाय सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम उन्हें
1: हाँ
0: अमल में
1: सभी
0: नहीं
1: को
0: लाते
1: करना
0: हैं।
1: चाहिए।
0: जी, हम अमल में नहीं लाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक संकल्प हमारे श्रोताओं की तरफ से जरूर लिया जाए। तो हरिशंकर धाकड़ जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। नमस्कार बहन जी,
0: कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट हजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश कुमार सैनी जी कैसे हैं?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: अच्छा,
1: और इस समय अच्छी गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है।
0: बिल्कुल, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और
1: जी।
0: इसी बात से जुड़ती हुई हमारी बात है, आज की हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर हम बात कर रहे हैं जिसका
1: जी, बहुत
0: दुष्परिणाम।
1: अच्छा विषय रखा आज आपने
0: जी, क्या कहना चाहेंगे आप
1: जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है वो सब अपने ही द्वारा फैल रहा है, और जो पानी है पानी की भी बहुत बचत करनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए
0: जी।
1: और जो जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो जैसे अगर बस से भी जा सकते हैं कहीं जाना है तो ऐसा नहीं अगर अपन जंगल जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे,
1: जी,
0: ये
1: जी।
0: एक बहुत अच्छा संकल्प है और ये सभी को करना चाहिए। सुरेश कुमार सैनी जी, हमें अच्छा लगा कि पानी को लेकर आपकी चिंता है और इस बार जो गर्मी पड़ी है मुझे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण की बात इस गर्मी ने जन जन तक पहुंचाई है ना?
1: जी बिल्कुल। देखिए कभी बारिश हो जाती है अचानक, बेमौसम बारिश हो जाती है
0: जी,
1: ये सब पर्यावरण मतलब उसी का असर है।
0: बिल्कुल, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा
1: जी,
0: है,
1: जी।
0: फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लेशियर हैं वो पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना? तो
1: वो
0: वो
1: भी घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो अगर पिघल रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर मनुष्य को, हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बात है ना?
1: जी, जी।
0: और मैं ये महसूस करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण पर बातें बहुत होती हैं लेकिन कार्य रूप में बहुत कम लोग इसमें सक्रिय हो
1: जी,
0: पाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन करते नहीं है।
0: तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे इस दिशा में?
1: जी हमारा तो हर वर्ष का यही संकल्प रहता है कि हम 2-4 पेड़ हर वर्ष लगाते हैं।
0: तो आप
1: बारिश के महीने में अभी गड्ढे खोद कर डाल दीजिए
0: तो
1: और जो खेतों के किनारे मेड़ और जो मलाई रहती है
0: जी
1: उसी
0: जी
1: पे लगाते हैं।
0: जी, आप पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों को बड़ा करने का दायित्व भी निभाते हैं और
1: जी,
0: आपने पानी की बचत की बात की जो कि बहुत आवश्यक बात है।
1: जी,
0: कोई भी संसाधन जो आपको दिया गया है अगर उसका आप बहुत बेफिक्री से उपयोग करते हैं तो फिर
1: जी,
0: वो कम पड़ ही जाता है ना?
1: जी।
0: इसलिए

0: आवश्यक है कि हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग में लाएं।
1: जी बिल्कुल। कुछ लोग क्या है कि जो नल सप्लाई आती है, तो मैंने भी देखा है अपने यहाँ, तो पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद खुली छोड़ देते हैं
0: बिल्कुल,
1: टोटी, उसको बंद नहीं करते हैं।
0: बंद नहीं करते हैं। जो
1: जी
0: ब्रश करते हैं, जब तक ब्रश करते हैं तब तक नल चलता रहता है, वो भी पानी
1: चलता
0: बर्बाद
1: रहता
0: होता
1: है,
0: है ना।
1: किसी किसी की तो कपड़े गाड़ी धुलती है
0: और
1: पानी
0: जो
1: में।
0: घरों में हम पानी का उपयोग करते हैं सब्जियां धोने में, या जो अपने रसोई घर में जो पानी बच जाता है उसका
1: जी,
0: उपयोग
1: तो
0: हम
1: उनको
0: अपने,
1: पेड़ों में डाल
0: हाँ,
1: देना
0: बगीचे
1: चाहिए।
0: में कर सकते हैं, पेड़ों में डाल
1: जी जी
0: सकते
1: जी
0: हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो किए जा सकते हैं, और
1: बिल्कुल
0: हर इंसान जब इसमें शामिल होगा तभी पर्यावरण संरक्षण की बात सार्थक हो सकेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सुरेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन
1: ओके
0: किया।
1: जी, नमस्कार बहन।
0: नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: विकास आर्या, प्रयागराज से।
0: विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे। आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: आज के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे मैम, जो आज के प्रदूषण जो फैलते हैं, ये हम सब अनुरोध करते हैं कि कुछ जो होते हैं ये धुआं वगैरह और जो साफ सफाई प्लास्टिक, ये ना करें प्रदूषण, इससे हमारे बहुत से पर्यावरण पर ये नुकसान हो रहे हैं। और लोग कहीं भी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, ये कभी गलता नहीं है और इससे बहुत ही हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है।
0: हमारी धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना, जल स्रोतों के लिए भी अच्छा नहीं है
1: जी। और ये भी कहना चाहेंगे कि पानी कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर बूंद से करें तो कोई भी चीज भर सकती है।
0: बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जल का अनावश्यक जो अपव्यय है वो ना करें, है ना, उसको सदुपयोग करें पानी
1: कहीं
0: का।
1: कहीं पर हम देखते हैं कि लोग पानी बहुत ही बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हमारे पास पानी है तो अब हमें कोई कमी ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक कहावत है कि उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, मतलब जैसे कि पानी एक मूल्यहीन चीज है ना, एक मूल्यहीन तत्व है, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।
1: जबकि नहीं होगा तो हमारा फिर ये जीवन जी बहुत ही मुश्किल से कटेगा।
0: बिल्कुल, जबकि अब समझने की बात ये है कि जिस तरह से आप पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, उससे ज्यादा कीमती अब पानी है, तो पानी की तरह बहाना ये बात ही अब बेमानी हो चुकी है। आपको बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए हम कहते हैं कि तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल। तो विकास जी, ये बताएं कि आपका क्या संकल्प है, या कई संकल्प हो तो वो भी बताएं, कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं आज?
1: बिल्कुल, हम तो यही संकल्प लेना चाहेंगे मैम कि हम खुद से भी, अपने आसपास भी यही कहते हैं कि सब लोगों को कोई भी चीज हो उसे बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि आप हर संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। तो
1: कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बिजली फर्जी खर्चा करते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास भी ये चीज कहते हैं कि सब लोग जितना काम है उतना ही खर्च कीजिए।
0: बिल्कुल। और अभी चूंकि देखिए गर्मियों का समय है, तो अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि हर कमरे में पंखा, कूलर या एसी चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्य एक या दो कमरे में रहें और उसमें ही एसी कूलर चलाएं, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
1: जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि अब ये हमारे पास है तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये आता है
0: जी। तो विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, हम आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: जी नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। ग्राम बनेता तहसील बंडा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहे हैं मैम। आपके
0: महेंद्र
1: लिए
0: सेन
1: हमें
0: जी।
1: श्रोता है।
0: हाँ महेंद्र सेन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: जी मैम, लाइफ में पहली बार लगाया हो, बड़ी खुशी हुई हमारा ने जो आज
0: अच्छा, पहली
1: पक्का
0: बार फोन
1: फोन
0: लगा
1: लगा
0: है,
1: है।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: जी मैम, हमारे कुछ भी है कि सबसे पहले तो अपने लिए बनों के लिए आग से बचाना चाहिए और हर श्रोता के लिए एक पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए।
0: वनों को आग से
1: और
0: बचाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात
1: जी,
0: आपने कही है, बिल्कुल।
1: और नदी है, नाले हैं, इन गंदगी मत रखो, क्योंकि ये दूसरे होंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो जल स्रोत हैं अगर वो गंदे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी, है ना।
1: जिससे क्योंकि उसमें गाय वगैरह हैं, कोई भी मवेशी पानी पीता है तो सर वो खत्म हो जाते हैं, पॉलीथिन वगैरह हैं जो आती हैं बैठ के जो उसमें, तो ये सर बहुत जटिल समस्या है।
0: बिल्कुल, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनका जो उपयोग हम अब भी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, और सारी जानकारी होने के बावजूद उसका उपयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है
1: और पेड़ भी लगाना चाहिए हर इंसान के लिए।
0: जी। तो ये तो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, और आप चिंतित हैं जंगलों को लेकर और धरती के स्वास्थ्य को लेकर। प्लास्टिक की आपने बात की है, पानी की आपने बात की है, साफ सफाई की बात की है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपके क्या क्या संकल्प होंगे, आप क्या क्या करेंगे आज से, ये बताइए।
1: क्योंकि मैम हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वनों की देख रेख करते रहते हैं, और हम अपनी क्यारी वगैरह में हर चीज लगाए, आम वगैरह, इनके तो पानी आने देते हैं और साफ सफाई का फुल ध्यान रखते हैं।
0: जी,
1: जी मैम,
0: तो जाहिर सी बात है कि पेड़ लगाने का काम तो यूं ही होता है आपसे, और जो आपने बात की है जल स्रोतों की सफाई की, उसमें ज़रूर आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना
1: बिल्कुल मैम, और सभी के लिए देना चाहिए।
0: जी। तो महेंद्र सेन जी, आज आपने हमें फ़ोन किया, हमसे बातचीत की, इस विषय पर अपने विचार रखें, आपका हृदय से आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैम जी। मैं जय नरसिंह दो FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूं मैम जी।
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर एक सार्थक विचार आप रखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को देख कर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और क्या संकल्प है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
1: देखिए मैम जी, मैं श्रोता होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। और बात पर्यावरण की चल पड़ी है तो मैम जी बहुत ही अनुकूल विषय है। मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया तो मैं सबसे पहले आपको एक अनुकूल बात बता दूं कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ मैम जी।
0: क्या बात है बहुत अच्छी बात।
1: मेरे पास वीडियो कॉल होता ना मैम जी, सचमुच में वीडियो कॉल करता और आप रेडियो में भी लोग देख पाते मुझे और आपको। तो पीपल का वृक्ष है, इसकी छांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बोलो खड़े होकर के मैम जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: तो मैम जी देखिए, मैं तो वृक्ष लगाता ही रहता हूँ, मैंने एक बरगद का वृक्ष लगाया था।
0: कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपके मन में किस प्रकार

0: मनुष्य ज्यादा हैरान मैं समझता हूँ प्रकृति से, प्रकृति को लेकर के, यदि प्रकृति अपनी पे आ जाए तो मनुष्य को तो खत्म कर देगी, तो मनुष्य का दायित्व बनता है कि प्रकृति को बचाए रखे, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है।
0: इन पांचों चीजों को बचाने का दायित्व एक मनुष्य का बनता है कि इसे बचा के रखें। जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल कह सकते जीव का है,
1: तो क्या है कि संपूर्ण जीव जगत जो है
0: अनुकूल है मैम
1: जी, संपूर्ण जीव जगत का संरक्षित रहना, सुखी रहना आवश्यक है मनुष्य के लिए, है ना। तो कमलेश जी, आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है चिंता का विषय है और हमें प्रकृति के हर तत्व की रक्षा करनी चाहिए, आपका क्या संकल्प है, आप क्या करेंगे?
0: तो मैम जी संकल्प, मैं तो जल को बचाता हूँ ज्यादातर, मैं जल की तरफ ज्यादा आश्रित रहता हूँ क्योंकि जल है तो कल है।
1: क्या बात है, तो जल संरक्षण के लिए
0: मुझे कोई भी एक ही बूंद पानी बहाता ना तो मुझे गुस्सा आती है।
1: बिल्कुल, टोकना आवश्यक होता है क्योंकि पानी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो बहुत बेपरवाह रहा है शुरू से। अब लेकिन पानी अपनी कीमत बता रहा है और बता रहा है कि जल धन है, समृद्धि है, निधि है, उसे उस तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी खजाने को देखते हैं, संरक्षित करते हैं।
0: मैम जी मैं तो एक बात रखूंगा कि जल है तो कल है, वरना चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ हलचल है तो वीरान आने वाला कल है। जल ही तो जीवन है, जीवन को बेकार मत बहाओ, अभी समय है मानव तुम जल के प्रति चेत जाओ। जल बिन बताओ कैसे मिलेगी दो जून की रोटी, जल से है आपके हमारे जीवन की संगोष्ठी, खिल तो जागा यह कमलेश बिन पानी के कीचड़ में, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चूंकि जबकि इत्यादि के चलते कैसे बनेगी कीचड़ बिन जल में।
1: क्या बात है, तो कमलेश जी आपने बहुत सुंदर संदेश दिया एक कविता के माध्यम से, जल संरक्षण की बात की, तो कुछ बारिश की फुहारें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: हेमचंद जैन।
0: नेमचंद जैन जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दमोह से।
0: आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की और जानना चाहते हैं कि इस समय जो पर्यावरण की स्थिति है, तेज गर्मी, बाढ़, भूकंप, है ना, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है, जल की कमी भी होती है, जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण की स्थिति देखकर आप
1: अधिक हो रही है, इसलिए तो वो जल की कमी होती है, गर्मियों में होती है और प्रायः जल की कमी थी।
0: जी, तो इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में क्या चिंता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कौन सा एक उपाय करेंगे, क्या संकल्प है आपका?
1: दिल में ये चिंता है कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों से ये सब पेड़ों से वाटर जाकर का खिंचाव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सरकार को इसमें थोड़ी रोक लगाना चाहिए।
0: सरकार तो रोक लगाती ही है, आपने जंगल कटने की बात की है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि जंगल जो हैं वो सभी जीव जंतुओं की आश्रय स्थली हैं, है ना, सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं, आपने बताया है कि बादलों को खींच कर वो ले आते हैं पेड़ और बारिश होती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें ताकि जैव विविधता भी हमारी बनी रहे। तो आप कौन सा एक संकल्प लेंगे नेमचंद जी?
1: यही संकल्प है हमारा कि कम से कम जंगलों की कटाई हो।
0: और पौधे लगा सकते हैं, आपने पेड़ों की बात की है तो जाहिर सी
1: अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के मूड में थे,
0: तो आपने बताया कि आप पेड़ लगाने के मूड में हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बहुत से पेड़ लगाइए, उनको संरक्षित कीजिए, बड़ा कीजिए। तो नेमचंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मैं मनीष निमाड़े।
0: तो मनीष जी, आज का विषय जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं पर्यावरण को लेकर आपके भीतर हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका क्या संकल्प है।
1: जी, पर्यावरण देखिए हम लोगों का एक कहें कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अगर ये पर्यावरण कमी हुई, नष्ट हुआ या धीरे धीरे क्षीण होते होते खत्म सा होने लगेगा, तब बहुत विपदाएं आएंगे। विपदाएं आनी शुरू हो गई, प्रकृति अपना संकेत हर समय दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम मानव प्रजाति जो है उसकी तरफ कुछ दिन मना लेते हैं या पर्यावरण दिवस मनाकर और फिर भूल जाते हैं और कोई चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सरकार सब करेगी, लोग करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: हम खुद जब से नहीं करेंगे तब तक जो है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी जागेंगे, ना चार घर जागेंगे, ना नगर जागेगा, ना देश जागेगा और ना ही विश्व जागेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत हम अपने से करें। और मैं जो है पहले से इस विषय का चिंतित हूँ और चूंकि जागरूकता परिवार से मिली है हर विषय पर जानने की, देखने की, समझने की
0: जी।
1: तो हम लोग शुरुआत किए थे कि हम घर में मार्केट से कोई भी प्लास्टिक थैली नहीं खरीद के लाते हैं,
0: मतलब क्या
1: कोई सामान उसमें नहीं लाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई दिक्कत भी है तो पुनः घर लौटते हैं और फिर झोला लेकर ही सामान लाते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई देता है सब्जी भाजी देता है तो उसको मना करते हैं, नहीं भैया आप प्लास्टिक मत दो, हमारे पास झोला है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो परिवार में ये है कि हम लोग करते हैं। दूसरा, कभी भूले भटके किसी वस्तु में लाना अनिवार्य हो गया उसमें तो हम उसको डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको साफ करके या धो के रीयूज के लिए रखते हैं या कहीं और काम आ जाए, ताकि वो कूड़े में ना जाकर और अपनी वो ना फैलाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये प्रयास करते हैं, पानी बचाने का प्रयास करते हैं। पानी बचाने के लिए परिवार मिलकर प्रयास करता है
0: जी,
1: कि हम नल या शावर से कभी नहीं नहाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भरकर नहाते हैं।
0: जी जी जी।
1: कूलर का जो है हम परिवार में एक सामूहिक हमारा हॉल है, हम उसमें सभी उस एक कूलर से आनंद लेते हैं।
0: वाह।
1: तो हम इससे दोहरे लाभ कमाते हैं, बिजली बचाते हैं और पानी भी बचा लेते हैं।
0: बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं और साथ का आनंद उठाते हैं।
1: सवाल ही नहीं उठता, वो तो अनमोल धरोहर है।
0: जी जी जी। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सार्थक और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, हार्दिक आभार।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार। नाम बताइएगा।
1: नमस्कार नमस्कार। गोविंद जलोदिया खातेगांव जिला देवास।
0: गोविंद जलोदिया जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, गर्मी से अब ठंडी पड़ गई है। हाँ
0: जी, तो कुछ बारिश की बूंदों ने राहत तो दी है,
1: हाँ
0: लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं और कोई एक सार्थक
1: पर्यावरण तो
0: पहल।
1: क्या है कि पर्यावरण से तो पूरा स्वस्थ चल रही है। पर्यावरण क्या है, जब तक तो झाड़ पेड़ पौधे पदे ये वो नहीं रहेंगे, प्रदूषण नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो वातावरण शुद्धिकरण रहेगा ही। इससे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सबसे जरूरी तो ये है कि आदमी ने क्या, अभी जैसे अभी 5 तारीख को बना रहे हैं तो एक संकल्प कर लेना चाहिए और वहां से चल के रोज एक कुछ ना कुछ झाड़ पेड़ पे पानी देते ही रहो।
0: तो आप पौधों को परवरिश देने की बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: पेड़ पौधे को पानी देते रहो, ये भी संकल्प कर लेना चाहिए। बनाना मतलब झाड़ उगाना तो अलग बात है,
0: बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पौधारोपण से
1: यही
0: बात
1: सभी
0: बनती
1: जरूरत है।
0: नहीं।
1: तो पर्यावरण से उससे ही शुद्धिकरण रहता है, आगे और पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पे ये फल फूल वगैरह टाइप यही वो तो आप कर दो, इनको रोज आप पानी दो तो ही वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है
0: बिल्कुल। तो आपने
1: ये
0: ये कहा कि
1: हाँ
0: पौधे लगाना तो आवश्यक है ही,
1: हाँ आवश्यक है ये।
0: उनकी परवरिश एक बच्चे की तरह करना आवश्यक होता है। वो पौधा बड़ा हो जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका क्या संकल्प रहेगा?
1: वो संकल्प ये है मेरा है, मैं तो डेली वैसे जल तो चढ़ाता हूँ, वैसे तुलसी का वो है जो पौधा और दो तीन मतलब जो उसके फूल भी है, तो जब सूरज ग्रहण कर तो सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं।
0: जी
1: अब और 5 तारीख से और संकल्प कर लिया कि हम डेली मतलब जो है पेड़ पौधों में पानी देंगे।
0: तो आप जहां भी देखेंगे सूखते पौधे पानी देंगे, ये एक अच्छा संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। बहुत बहुत
1: ठीक है।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी स्मृतियों का घर है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे हमारी सांसों के प्रहरी हैं। नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो जीवन की सतत बहती हुई कथा हैं। और पर्यावरण केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तब आवश्यकता है केवल चिंता की नहीं, बल्कि संकल्प की। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को

स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरी भरी धरती का उपहार दे सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपने संकल्प हमसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प आपको हमेशा याद रहेंगे, एक दूसरे को भी आप ये बातें याद दिलाते रहेंगे और इन संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां बातों से बात बनेगी नहीं। बातें अब तक खूब हुई हैं, अब बारी है कुछ कर गुजरने की, तभी धरती पर जीवन की बात हो सकेगी, हमारे अस्तित्व की बात हो सकेगी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज की प्रस्तुति थी सुनीता सिंह की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्योपुर के कुरु नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है ये। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। प्रदेश में आज मेगा अपार आईटी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईटी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। शिक्षण संवर्धन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आप सभी की पसंद पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। तो भारत और भारत से बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार। आपने अपनी पसंद हमें भेजी और हम आ चुके हैं आपके गाने लेकर। पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। आशा भोसले शाहिर की आवाज़ है आशा भोसले की। गीत लिखा है शाहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। इस गाने को पसंद किया है नागपुर से डॉक्टर विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देशपांडे, मोहन, रमेश बल्लाल और आपके सभी साथियों ने। तो आपकी पसंद पर ये गीत हम भेज रहे हैं काजल फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है अखिल भारतीय तीर संरक्षण महासभा मध्य प्रदेश के सभी साथियों ने। अनिल अरुणा RBI, आदिश्वर प्रसाद, अल्पना जैन, संजय जैन, सीमा जैन, संध्या आज़ाद मोदी, प्रदीप जैन, राजेश ममता डालडा, संतोष किरण ट्रांसपोर्ट, वर्षा ज्योति स्वरूप जैन, सुषमा सुनील गंगवाल, जितेश आभा, ज्योति आचार्य और राकेश रौनक ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सुजाता फिल्म से एसडी बर्मन की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का। और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने, अमेरिका के बोस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन और आपके परिवारजन प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव और अनिरुद्ध। साथ ही आप हमारे देश हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, रिश्तेदारों और सभी मित्रों को भी सुनवाना चाहते हैं ये गीत। तो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी और अपने साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

और लीजिए आपकी फरमाइश का अगला गीत ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज़ है। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सभी की पसंद पर महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत सुनिएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। बेताब फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के फरमाइश करता इस गीत के बाद हम आपको बताते हैं।

बेताब फिल्म के इस गीत को पसंद किया था भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, अक्षरा अनुष्का और विनायक शर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाया बेताब फिल्म का ये गाना। और लीजिए, आपकी फरमाइश का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। और इसी गीत को पसंद किया है बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जे एस नायक, शोभा नायक और जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लोफर फिल्म के इस गीत को, जिसे आशा भोसले ने गाया था, इसके साथ ही आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए साधना जैन को। अगली बार नए साथियों के पत्र और नए गीतों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:25 हुए हैं। अगला प्रसारण अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको संगवा रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग एक।
1: इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: यशवंत क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
0: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए।

0: मगर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
1: यही सवाल शंभू काका,
0: ठीक यही सवाल मुझे हर पल झकझोरता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो।

0: अबे साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका। कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है।
1: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
0: हाँ काका,
1: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
0: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
1: हड़ताल तो यूनियन करती है,
2: हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है।
1: मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
0: क्या
1: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
0: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है। क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका, मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
1: बेटा, तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की कमी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं काका।
1: कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है। अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा।
0: लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है, अब वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
1: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
0: हाँ?
1: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
0: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
1: सच? जरा बता तू क्या समझा।
0: देखो काका, मैं मानता हूँ कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है। कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं, लेकिन काका यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता। अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
1: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
0: काका, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं। लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
1: भाई आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
0: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं। अब काका आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ,
1: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का, तेरा जोश देखकर उम्मीद बंधी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा। मेरी बात ध्यान से सुन।
0: हाँ काका,
1: तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
0: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
1: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है, यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
0: तो फिर काका?
1: फिर क्या, अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा। अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है। दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
0: सच काका, सच। लेकिन काका क्या

0: इस बात के लिए सहमत होगी?
1: भाई, इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है। लेकिन जसवंत,
0: हाँ काका,
1: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा है?
0: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा। आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका, कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
1: ठीक है बेटा।
2: अरे वाह, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई। हाय हाय हाय हाय, और फिर पानी में नहाती हुई परी। इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
3: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती। फिर ये बिजली कैसे क्या चमकी? लगता है कोई भूत प्रेत है। यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए। हम आप कौन हो बाबू? पराई नारी को नहाते हुए छुप छुप कर देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
1: ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना। पानी में खड़ी हुई तो किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो। जरा तेरी कुछ तस्वीरें खींच लूँ।
3: यही तस्वीरें खींचेंगे बाबू? पर मैं तो आपको जानती तक नहीं।
1: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई। शहर से घूमने आया हूँ।
3: मैनेजर की छोटे भाई हैं आप?
1: हाँ हाँ, क्यों मेरी बात का विश्वास नहीं?
3: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों लेना चाहते हैं?
1: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, बस जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
3: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
1: हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा।
3: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
1: अच्छा, थोड़ा मेरी तरफ देखो।
3: ये?
1: थोड़ा दूसरी तरफ घूमो।
3: ये ऐसे?
1: हाँ, अब जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा। अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ उधर करो।
3: ये ऐसे बाबू?
1: ऐसे हाँ, एक हाथ थोड़ा और ऊपर। बस बस बस बस बस, इतनी तस्वीरें बहुत हैं। अब जरा नदी से बाहर तो निकलो।
3: बड़ी बेशर्म यार, अपने सामने ही मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं। ऐसे कैसे?
1: कमाल है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसे ही बाहर निकलना चाहती थी।
3: तब की बात और थी।
1: अच्छा,
3: तब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अच्छा बाबू, चलो तुम मुंह घुमाकर खड़े हो जाओ।
1: अच्छा अच्छा, समझ गया। लो लो, मैंने ये मुंह घुमा लिया।
3: देखो, जब तक मैं ना कहूँ इस ओर मुंह ना करना।
1: जो आज्ञा देवी जी।
3: आपने मुझे देवी जी कहा?
1: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी ही कहना पड़ा।
3: मेरा नाम नारायणी है बाबू जी। बाबू जी, अब आप मेरी ओर घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
1: लो, मैं घूम गया। भाई, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, नारायणी। यानी देवी, सौंदर्य की देवी।

0: ठीक है, बात पूछो नारायण।
1: हाँ पूछिए बाबू जी।
0: तेरा ब्याह हुआ कि नहीं? पता ना नारायणी, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: क्यों पूछ रहे हैं आप?
0: पहले बताना, बता तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: हो गया।
0: क्या?
1: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
0: नारायणी, ये तो पता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
1: वो भी इस दुनिया में अकेला है बाबूजी, मजदूरी करके अपना पेट भरता है।
0: अच्छा अच्छा, एक बात और बता, क्या वो तुझे पसंद है?
1: नहीं।
0: क्या?

0: बेटा यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तू तो उसे जानता है ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका।
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका, आखिर यहाँ के मजदूरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
0: भूख बेटा, भूख। भूख ही वो कारण है जो जीते जागते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका, तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका, इस साइट का अब कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा, जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका, एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका, सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिलाया। अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका, जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ यशवंत।
1: काका, आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है, इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर रहेंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है यशवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, लिचू भी हमारे साथ है। अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह सकती।
1: काका, तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका, तब कोई भूख से नहीं मरेगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल।
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे ऐसा शुभ दिन जल्दी आए।
1: हाँ काका।
2: मेरी नारायणी, कैसी होगी मेरी नारायणी, मेरी जीवन संगिनी। सोचा था उसके माँ बाप की मौत के तुरंत बाद उसे घर ले आऊं, मगर क्या करता, क्या करता मैं, उन दिनों बेकार जो था, अपना पेट भरना ही मुश्किल था,

0: उस बेचारी का कहां से भरता? वो सोचती तो जरूर होगी जिम कि संकट की घड़ी में उसका मर्द भी उसके किसी काम नहीं आ सका। बेचारी मजूरी कर रही है। मजूरी करना कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है। अगर गरीबी और भूख ना रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों बढ़े? ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देखरेख का काम कर रहा हूं, मगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या? बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है। मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर नारायण, अगले महीने ही तो गौना करवाना है, जबकि मेरी गांठ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं। अरे कैसे होगा ये सब? कैसे? लगता है ब्राह्मण जा गया है, उसे प्यास लगी है। मैं जाकर उसे पानी पिलाता हूँ। ब्राह्मण महाराज
1: बेटा
0: लीजिए, आप पानी पीजिए। लीजिए
1: लाओ बेटा,
0: लीजिए।

0: भगवान तुझे लंबी आयु दे बेटा।
1: महाराज
0: बेटा तू मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा।
1: ब्राह्मण महाराज आपके साथ मेरा भी खाली समय कट जाता है। महाराज एक बात समझ में नहीं आई।
0: कौन सी बात बेटा?
1: महाराज आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं।
0: हाँ
1: आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
0: यह एक दुख भरी कहानी है शिबू बेटा। जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी की छूत की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
1: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है। आप रुकिए, मैं आपको पानी देता हूँ। ये लीजिए पानी और पीजिए। ये लीजिए
0: बेटा लाओ।
1: महाराज आपके बलगम में तो खून भी है।
0: शायद मेरी बीमारी अंतिम चरण में है।
1: महाराज
0: बेटा बेटा
1: जी महाराज
0: एक बात बताएगा?
1: जरूर जरूर पूछिए महाराज।
0: बेटा क्या क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
1: महाराज भला मैं आपसे क्यों डरने लगा?
0: बेटा तू मेरे कपड़े धोता है, मेरी गंदगी साफ करता है, तुझे किसी टीबी हो सकती है बेटा। इस भयानक बीमारी से तू नहीं डरता क्या?
1: ब्राह्मण देवता हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है।

0: ये टीवी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से क्या डरना है। तो ये कहता है शुभ बेटा, बीमार इंसान तो फिर भी कुछ दिन जी लेता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान ना ना ना ना, भगवान किसी को भूख का रोग ना दे बेटा।
1: हाँ महाराज, ठीक कहते हैं आप,
0: भूख का रोग ना दे। महाराज
2: समझिए, महाराज आपकी खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज अब आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। समझिए समझिए महाराज।
0: हाँ बेटा, मेरी सांस कब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। मैं बेटा तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ।
2: महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बराबर होता है। देखिए महाराज, विनती करके आप मुझे नरक में ना ढकेलिए, आप मुझे आदेश दीजिए।
0: बेटा बेटा तुझे ध्यान होगा कि जब मैं 3 दिनों से भूखा था तो तूने मुझे अपने घर से रोटी लाकर खिलाई थी।
2: हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह याद है,
0: मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बेटा तू इस बात का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, इस बात का भी नहीं कि मैं तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा,
2: ब्राह्मण महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
0: बेटा बेटा ये नहीं पूछेगा कि ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
2: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज,
0: तू तो बहुत समझदार है ऋषभ।
2: महाराज आप किसी भी तरह की चिंता न करें, अपमान का घूंट पीना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा, आप निश्चिंत रहें महाराज।
0: जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा।

0: नारायणी,
1: क्या बात है नारायणी, तू रो क्यों रही है?
0: बसुमती काकी, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
1: कौन चला गया? वो चौधरी?
0: हाँ काकी, हाँ, उसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। क्या मेरे की चमक समझते, मैं इतना खो गई कुछ कुछ होश ही नहीं रहा। होश तो तब आया जब उसकी शादी की बात सुनी। हाँ काकी, वो अपना ब्याह करने गया है। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा काकी?
1: नारायणी, ना, ओ अभी रोना धोना बंद कर। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि बाबू बाबू के चक्कर में ना पड़। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। नारायणी, उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। सीबीएसई ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामिगाहरा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुत

तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। प्रकृति का पोषण करें ताकि भविष्य समृद्ध हो, वन्य जीवों की रक्षा करें, जैव विविधता को संरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हमारा अधिकार। मैनो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता नहीं करता। मैनो आज विश्व तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। मैनो किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हों। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। मैनो इस असमानता के कारण समाज की आधी आबादी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। सतत विकास लक्ष्य 5 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मैनो जब महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को सतत विकास की आधारशिला माना गया है। मैनो महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध भविष्य के निर्माण से है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करती है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण होता है जो भविष्य में देश और समाज के विकास में योगदान देती है। मैनो महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ती है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैनो आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकती हैं। मैनो हमारा आने वाला कल केवल आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मैनो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जल संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में निपुण भूमिका निभाती हैं। बहनों जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। बहनों सतत विकास लक्ष्य 5 इन मूल्यों को और मजबूत करता है। जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैनो महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती हैं। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होती है। आइए बहनों सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

बहनों, भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लाखों ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बहनों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय। मैंने इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऋण सुविधाएं, बाजार से जुड़ाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। बहनों, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अनेक महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। हालांकि बहनों, यह योजना अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच व तकनीकी ज्ञान का अभाव कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बन

0: करता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। बहनों, यह कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो लाखों महिलाएं अपने जीवन में समृद्ध और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख सकती हैं। बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी ने अपनी दादी नानी मम्मी को जरूर सुनते हुए देखा होगा रेडियो, जिसको सुनने के बाद उन्हें सुकून महसूस होता था। तो आइए बहनों, हम बातचीत करते हैं अपनी दादी की नातिन श्रुति शर्मा से, दादी की याद में सुखद रेडियो के अनुभव।
1: नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आकाशवाणी का जब भी नाम सुनती हूँ तो और अपनी दादी से पूछती हूँ कि उनके क्या अनुभव रहे हैं आकाशवाणी और रेडियो के साथ खासतौर पर। तो वो बताती हैं कि रेडियो मात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। पुराने समय में पूरे घर में एक ही रेडियो हुआ था और वो उसी को पूरा परिवार बैठकर उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता था। वो बताती हैं कि पुराने समय में विविध भारती के बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें कि फिल्मी गीत आते थे, और वो कहती हैं कि वो फिल्मी गीतों का इंतज़ार उन कार्यक्रमों का इंतज़ार बहुत बेसब्री से किया करती थी, जिससे वो नए फिल्मी गीत उस समय के सुन पाएँ। और वो बताती हैं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, उसमें समाचार, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी जानकारियाँ भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती थी। आकाशवाणी और रेडियो जो है उनके लिए ऐसा एक अनमोल याद है जिसका नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो कहती हैं रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे रेडियो, और आज के समय में जो इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन के और भी जो साधन चल रहे हैं तो उसमें फ़र्क ये बताती हैं कि रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे मटके का पानी, और बाकी जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल, ये साधन ऐसे हैं जैसे फ्रिज। तो मटके का पानी जो होता है उससे हम पिए तो बीमार नहीं पड़ते, वो ठंडक भी प्रदान करता है, मगर फ्रिज हमें ठंडक तो देता है, पानी भी ठंडा रखता है लंबे समय तक, पर उसमें ये भी रहता है कि वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा गला बैठ सकता है और पर्यावरण को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो हाँ, मेरी दादी सभी गाने रेडियो पर ही सुना करती थी। जो भी विविध भारती के पहले शाम को प्रोग्राम आया करते थे, वो उनका कहती हैं कि वो उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी, और जब कोई और रेडियो लिया रहे तो वो उन सोचती थी कि ये कब हटे और मैं बैठूं रेडियो के सामने और अपना प्रोग्राम। बच्चे, बूढ़े, जवान, तो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे बताती हैं कि वो समाचार और ये स्वास्थ्य शिक्षा की सभी जानकारियां लेते थे, और फिर जो अभी जवान लोग रहे थे जैसे वो खेल और बाकी जो विभिन्न समाचार उनको सुना करते थे, और जो फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे वो फिल्मी गीत और जो भी फिल्म अभिनेताओं वगैरह के जो साक्षात्कार इंटरव्यू आया करते थे उनको सुना करते थे, जिससे वो उस दुनिया से जुड़ पाएं।
0: आपकी दादी अपने आप को कैसे अनुभव किया करती थी रेडियो के साथ?
1: मेरी दादी जो हैं वो सभी तरीके के प्रोग्राम सुना करती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम आया करता था तो वो बच्चा बन जाती थी, युवाओं में का प्रोग्राम आया करता था तो उनमें उत्साह और उमंग भर जाता था, और जब भी फिल्मी गीत आते थे तो वो उसी उस फिल्मों के प्रति इतनी उत्सुक हो जाती थी कि जैसे वो उसी सेट पर हो। तो सभी प्रोग्रामों को बड़े ही उत्साह के साथ सुना करती थी, चाहे प्रोग्राम कोई भी आए, रेडियो उनके लिए ऐसा साधन था।
0: दादी अब आपकी बोल नहीं पा रही हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा अनुभव करा दिया है उन्होंने रेडियो के बारे में कि आपको भी इच्छा होती होगी कि हम भी दादी के ज़माने में हुआ करते थे।
1: दादी मुझे सीख दिया करती हैं कि जो इंटरनेट और जो आजकल के साधन हैं इनको छोड़कर रेडियो भी सुना जाए। तो मैं भी कभी कभी रेडियो सुन लेती हूँ और जो उसमें गीत आते हैं वो भी मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। रेडियो ने बहुत प्रभाव डाला है, जो मतलब जेन जी जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है उसमें, वो भी कई बार सोचती है कि वो भी रेडियो सुने, मगर जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन है उनके जीवन का रेडियो और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा पूरी युवावस्था और अपना बचपन बिताया है।
0: श्रुति जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं गीत

मैंने बाजार में पुदीना खूब आ रहा है और पुदीना तो एक सुगंधित औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भोजन, पेय पदार्थों और आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। इसके लाभ भी बहुत हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, मुख की दुर्गंध दूर करता है, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, त्वचा के लिए भी लाभकारी है पुदीना। मैनो पुदीना कम कैलोरी वाला होता है। यह भोजन का स्वाद बढ़ाने का एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है। इसीलिए बहनों आज हम लेकर आए हैं पुदीने की चटनी बनाने की आसान विधि, जिसके लिए सामग्री इस प्रकार है। एक कप ताजे पुदीने के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक से दो लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, स्वादानुसार नमक, दो से तीन बड़े चम्मच पानी। मैंने बनाने की विधि इस प्रकार है। पुदीने और हरे धनिये को धो लें, फिर मिक्सर में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें, फिर इसमें नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर एक कटोरी में निकाल लें। लीजिए, तैयार हो गई आपकी पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसका आनंद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी के साथ ले सकते हैं और रोज के खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया आप प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजोपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिस

0: काल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर रहे थे कि टाटा मेमोरियल की यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आई, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है, उसमें तो समय लगता है, लेकिन जिनको आज कैंसर है उनका क्या करें, वो इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल के, बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी। सुविधाएं तत्काल मेडिकल कॉलेज विदिशा में हम लोग प्रारंभ कर सकते, ये स्क्रीनिंग का, जाँच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए, हम वो चीजें जो आज जरूरी कर लें। डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
0: प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में सभी जिलों में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में पालकगण आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजा डांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभावहीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत

0: ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और

0: ने संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम

0: विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जहां आपको हम सुनाते हैं आपके पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साथ है मोहम्मद अजीज़ और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, KR साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है जो कि है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुदा गवाह से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कबरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबापट्टी पलियास से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनियापारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा,

रवि का संगीत हसन कमाल के बोल, सलमा आगा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत भरत व्यास के लिखे बोल आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल 4620002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्यनाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा डॉ. C.R. मेहता से आज शाम 6:00 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम PM मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा शाम 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00 बजे। 9:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 बजे सुनिएगा ऋषिकेश गंगुरडे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज दोपहर भोपाल विधानसभा में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज

मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हम एक होकर लड़ें तो अन्याय हार जाता है। आज झारखंड राज्य बनाने में भी बिरसा की प्रेरणा काम आई। उन्हें धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का बलिदान हमें याद दिलाता है, देश के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहो। उनकी याद में हम भी आज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षा लें, एकजुट और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें। और दोस्तों, अब श्रेया घोषाल की मीठी और सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में आपको सुनवाते हैं जोश से भरा हुआ

0: दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक इम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनटीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ। ये वो समुदाय है जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। मनधन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला। पीएम जनमन ने 48 लाख से ज्यादा PVTG लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुँच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे जिनके फॉर्म आप 30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है एसएससी सीजीएल 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। आईटीआई डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डिप्यूटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक एनडीएमए पोर्टल पर किया जा सकता है।

अगली है नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, इसमें 268 पद ऑपरेटर टेक्नीशियन फोरमैन आदि के हैं। 10वीं आईटीआई डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी, इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा यूपीएससी में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण रेलवे, एसबीआई अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एएलपी जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें, क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली एनडीएमए भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है, लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जल्दी आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही, और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का, तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanirivaa@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाओ।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान।
3: कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ओमकारा फिल्म से। राहत फतेह अली खां की आवाज है, गुलजार की शब्द रचना, संगीत विशाल भारद्वाज का।

अगला गीत आरक्षण फिल्म से लिया है, जिसे गाया श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर। दूरदर्शन की डायरेक्टर

0: होम सेवा
1: ईडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: एशियाड दिखा पोखरण दिखा मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा चंद्रयान दिखा इनसैट दिखा

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, विनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी ever been told. Gen Z भी है also Gen old, नहीं पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सी आर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की है चंद्रशेखर शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी अपनी गौरवमय और स्वर्णिम प्रसारण यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हमारे श्रोता जानते हैं कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी पर नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई थी। बहुजन हिताय बहुजन

0: प्रमुख है और सूचना शिक्षा मनोरंजन, इन सब बातों को लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से जनहित के लिए जो कार्य किए जाने हैं आकाशवाणी उसमें अपना पूरा योगदान शिद्दत के साथ निभा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के वक्त तो हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP उसका आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे कृषि क्षेत्र से ही आता था। और इस सफर के दौरान जब केवल आकाशवाणी अकेला सरकारी माध्यम हुआ करता था, आकाशवाणी ने किसानों तक नई तकनीक, आधुनिक उपकरण और नई नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियां पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा ग्राम सभा और कृषि चर्चा और किसानवाणी जो LRS के लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से जिसने स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उन तक कृषि के नए नए उपादान, नई नई तकनीक पहुंचाने का और ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक कार्य करने की भूमिका निभाई है। आज इस प्रसारण यात्रा के संदर्भ में ही हम एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर CR मेहता जी, जो डायरेक्टर हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल में, और कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान इस विषय पर आज हमसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसे कि आज का विषय है कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान, आकाशवाणी की एक लेगेसी रही है, लंबी यात्रा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी का कृषि विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान है इसको किस प्रकार से आंकते हैं।
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बधाई देता हूं कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप सभी आकाशवाणी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। जहां तक कि कृषि विकास में आकाशवाणी का योगदान है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि जब आज से करीब 40 साल पहले या 45 साल 50 साल पहले
0: जी,
1: तब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, आकाशवाणी ही एक माध्यम था,
0: अकेला माध्यम,
1: चाहे वो कृषि से संबंधित जानकारी की जरूरत हो या आपको देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, उसके बारे में सूचना की जानकारी का सवाल है
0: जी।
1: तो उसमें पहले एक रेडियो हुआ करते थे और रेडियो भी इस प्रकार के होते थे कि पहले बटन ऑन करो, थोड़ी देर बाद उसमें से आवाज आती थी
0: जी।
1: फिर बाद में वो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे
0: जी।
1: पहले बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, फिर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आए और अब आजकल बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हो
0: जी।
1: शुरुआत की बात करें तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे
0: जी,
1: तब हम कृषि की तो बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब भी विविध भारती गीतमाला प्रोग्राम आता था तो उसको हम अक्सर सुनते थे और उसमें ये देखते थे कि इस बार कौन सा नंबर वन पर है, नंबर टू पर कौन सा गाना है, वो गाने की रैंकिंग वगैरह करके सभी गानों को बजाया जाता था
0: जी।
1: और वो रैंकिंग होती थी, उस प्रकार के कार्यक्रम होते थे
0: जी।
1: दूसरा मुझे अभी भी याद आ रहा है, अगर पुरानी बातें मैं सोचता हूँ तो तीसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो हुआ था
0: जी,
1: इंग्लैंड में हुआ था
0: जी
1: 1983 में
0: जी,
1: और उस समय TV उस समय खास तौर से मैं जिस जगह पर था नहीं आए थे, भारत में कुछ बड़े शहरों में उस समय TV आ गए थे,
0: उस वक्त शुरुआत मानी जाती
1: जी जी
0: एक व्यापक,
1: तो उस समय हमें जब पता चला कि भारत फाइनल में है, बड़ा क्रेज था, तो हमने आकाशवाणी के थ्रू ही उसकी कमेंट्री सुनी थी और वो कमेंट्री रात को देर तक सुनी थी और भारत जीत गया था
0: जी।
1: तो उस प्रकार से हम आकाशवाणी से शुरू से जुड़े रहे हैं। जब कृषि की बात करें तो जब से हमने कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री की, उसके बाद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में एज ए वैज्ञानिक ज्वाइन किया, उसके बाद आकाशवाणी की तरफ से हमें आमंत्रण मिला कि आप कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी दें किसानों को, तब हमें कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला। और आजकल तो आकाशवाणी के साथ बहुत सारे दूसरे मीडिया भी हैं जिसके थ्रू किसान कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं
0: जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले रेडियो पर जो हमारा वर्ल्ड कप भारत टीम जीती थी 1983 में
1: जी,
0: कपिल देव की कप्तानी में, और बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और भारत में पूरा खेल सिनेरियो जो चेंज करने का है उस जीत को श्रेय जाता है।
1: जून का महीना था शायद 21 तारीख या 23 तारीख।
0: हम सर ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पहला प्रोग्राम दिया, आपके जहन में अभी भी ताजा होगा कि पहला प्रोग्राम किस विषय पर था या किस केंद्र पर आपने दिया था।
1: मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी भोपाल में ही दिया
0: जी।

0: आकाशवाणी के
1: आकाशवाणी
0: भोपाल
1: भोपाल
0: केंद्र से।
1: जी
0: और वो कृषि अभियांत्रिकी में जो जो नई नई उस समय उपकरण आ रहे थे, आज जैसे नए नए स्मार्ट मशीनें आ रही है, उस समय स्मार्ट नहीं थी, लेकिन जो ट्रैक्टर से चलने वाली उस समय जो नई आ रही थी, उनके बारे में मैंने आकाशवाणी के कार्यक्रम के थ्रू जानकारी दी है।
1: जी
0: और उस जमाने में तो मेरा कहना है कि किसान भाई भी सबसे ज़्यादा आकाशवाणी से ही जुड़े हुए थे। दूरदर्शन बहुत कम
1: जी जी
0: या गाँवों में तो उतनी अच्छे से उपलब्ध भी नहीं था, और किसान अपने खेती का काम करने के साथ आकाशवाणी को सुनने की उनकी फिर भी आदत थी।
1: जी यही रेडियो की पोर्टेबिलिटी है। रेडियो के साथ किसी प्रकार के ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सबका लोकप्रिय रहा है। विशेष तौर पर किसानों के लिए इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सर अब ये बात करें कि जो आप CIA का प्रतिनिधित्व करते हैं,
0: जी
1: जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट में जो कुछ खास बातें रही हैं या खास उपकरण रहे हैं, उनके बारे में और उनके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या कोई भूमिका रही है, इस बारे में आपके विचार जानेंगे।
0: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जहाँ तक कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की बात करें,
1: जी
0: तो उसने भी अभी पिछले साल ही 50 वर्ष पूरे किए हैं।
1: जी
0: जब शुरू में खेती में उपकरण का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, तो मनुष्य और पशु चालित उन्नत कृषि यंत्रों के विकास पर हमारा काफ़ी जोर था।
1: जी
0: उस समय तो आकाशवाणी ही मेन मीडियम
1: जी
0: होता था, जिसके थ्रू हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते थे।
1: जी
0: उस समय इतना इजी नहीं था कि आपको मोबाइल हो और मोबाइल पर आप यूट्यूब या
1: जी
0: उसके
1: जी
0: थ्रू भी आप या व्हाट्सएप के थ्रू किसानों तक बात पहुंचाया। तब उस समय आकाशवाणी था, उसके बाद दूरदर्शन भी एक मीडिया आया, लेकिन
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: भी उतना पेनिट्रेशन नहीं था।
1: जी जी
0: उसके बाद धीमे धीमे जैसे इम्प्रूव टूल्स एंड मशीनरी पर, जैसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड, सेल्फ प्रोपेल्ड पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और आजकल जो हम स्मार्ट मशीनरी के डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इन सब के जब तक किसानों के पहुंचाने के लिए अभी भी एक आकाशवाणी एक सशक्त मीडियम है,
1: जी
0: जिसका कि हम समय समय पर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरे मीडियम भी यूज करते हैं, लेकिन आकाशवाणी की भी उसमें एक अहम भूमिका है।
1: जी और हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों में आपके संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन सराहनीय रहता है,
0: जी
1: और
0: जी
1: किसानों के लिए जो भी तात्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं, विषय होते हैं, उन पर बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ स्टूडियोज में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में 1 जून से 30 जून के मध्य केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के नाम से लॉन्च किया गया है,
0: जी
1: तो इसमें आप अपने संस्थान की और आकाशवाणी की भूमिका को किस प्रकार से आंकते हैं?
0: पहले तो मैं खेत बचाओ कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा।
1: जी
0: उसमें यह है कि आप सब जानते हैं कि अभी ईरान
1: जी
0: और US का युद्ध चल रहा है, और ख़ास तौर से उसकी वजह से जो मतलब तेल वगैरह का जो इंडिया इंपोर्ट करता है उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है, और तेल की कीमतें बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अब ये जो हमारे खाद बनाते हैं या खाद के लिए जो कारखाने चलते हैं, वो भी सब तेल पर निर्भर है,
1: ईंधन,
0: यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपोर्ट भी किया जाता है। तो इसको बचाने के लिए खेत बचाओ अभियान में विशेष जोर है। अभी क्या होता है, किसान खाद खेत में खेत की जरूरत के हिसाब से न डाल के उसको जितना मिल जाता है
1: उतना
0: वो
1: डाल
0: डाल देता है।
1: जी।
0: वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा खाद डालूंगा तो मेरी पैदावार ज़्यादा होगी। तो मेरा किसानों से ये आग्रह है कि खेत की मिट्टी की जांच कराएं, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसके बाद देखें कि खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता के अनुसार खेत में उपयोग कराएं। उसमें जैसे कि खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रामसिया गांव से
1: जी जी।
0: हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 1 तारीख को
1: जी।
0: किया। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और किसानों तक इस अभियान की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। लेकिन उसमें विशेषकर मैंने वहाँ भी देखा कि आकाशवाणी से भी भोपाल आकाशवाणी की टीम उपलब्ध थी, और उन्होंने भी उस प्रोग्राम को कवर किया, जिससे कि किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में मिले। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वैज्ञानिक इस इन 30 दिनों में अलग अलग गाँवों में जाके किसानों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और उसमें भी आकाशवाणी अपना योगदान दे रहा है।
1: जी हम सर बात करें ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और विशेष तौर पर आपके माध्यम से जो यंत्री

0: करण का प्रयास किया जा रहा है। तो जो महिलाओं के लिए जो ऐसे यंत्र जिनको कि महिलाएं भी अच्छी तरह से ऑपरेट कर सके, इस पे भी आपके संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं?
1: मेरा आपसे यही कहना है सभी से कि जो भी उपकरण होते हैं
0: जी,
1: वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको महिला या पुरुष दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि दोनों की कैपेबिलिटी
0: जी,
1: दोनों के स्ट्रेचर में डिफरेंस होता है, स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। तो अपन को उस प्रकार से उपकरण हम विकसित करते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट देते हैं, जिससे कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों कार्यकर्ता ढंग से उसको उपयोग कर सकते हैं। आकाशवाणी से भी मेरा यही अनुरोध है, समय समय पर हमारे साथी और हम लोग आकाशवाणी के थ्रू भी महिलाओं तक ये समाचार पहुँचाते हैं, आपके लिए हमने उपकरण विकसित किए हैं या उन जो एग्जिस्टिंग उपकरण थे उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि उनको आपके लिए सूटेबल बनाने के लिए। और उसमें हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारे संस्थान में आयोजित करते हैं, जिसमें कि आप भाग ले सकते हैं और आकाशवाणी के थ्रू भी ये हम किसानों तक और महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं।
0: जी सर, यहाँ पर मैं विशेष तौर पर किसानवाणी कार्यक्रम की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसानवाणी जिन केंद्रों के माध्यम से होता है, हमारे लोकल रेडियो सेंटर्स हैं वो, और उसमें स्थानीय स्तर पर किसान जो हितग्राही हैं उन तक रेडियो पहुंचता है, और वहां पर केवीके और बड़े संस्थानों के जैसे आपका संस्थान है, यहां के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको लाइव डेमो दिया जाता है और उस कार्यक्रम का एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा प्रसारण किया जाता है। तो ये जो भूमिका रही आकाशवाणी की, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: इसमें आकाशवाणी की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है। दूसरा ये है कि आकाशवाणी की एक्सेस या अवेलेबिलिटी
0: जी
1: बहुत ज़्यादा है।
0: जी जी,
1: कहीं भी आप कहीं भी सुन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप चलते हुए भी आकाशवाणी पर
0: जी जी
1: जानकारी ले सकते हैं और आपके जो कार्यक्रम है वो किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में इसके द्वारा पहुँच रहे हैं।
0: जी, आपका कोई यादगार अनुभव रेडियो के संदर्भ में, चूंकि हम रेडियो का ये 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई आपका ऐसा यादगार अनुभव?
1: उसमें विशेष तो मैं पहले ही कुछ एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल की कमेंट्री हमने रात को लेट तक जग के सुनी थी
0: जी,
1: वो भी एक बड़ा था। दूसरा है जो संगीतमाला
0: जी,
1: उस कार्यक्रम को हम करीब रेगुलर सुनते थे
0: जी,
1: और कृषि से संबंधित कार्यक्रम को तो हम उतना फिर भी अभी नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। और मेरा ये भी कहना है कि इसको थोड़ा और इनोवेटिव करने की जरूरत है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि पॉडकास्ट आ रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें क्या होता है कि आप बीच बीच में फोटोग्राफ्स डालें तो कम से कम और थोड़ा सा इंटरेस्ट किसानों का बढ़ेगा कि जो भी जानकारी दे रहे हैं आप किस मशीन की बात कर रहे हैं। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम मशीनों की बात करते हैं, अगर केवल मैं बात ही करूंगा तो समझ में नहीं आएगा जिसने वो मशीन देखी नहीं है
0: जी।
1: तो उसके साथ फोटोग्राफ भी हो तो कम से कम उसको ये पता चलेगा कि ये मशीन है जिसके बारे में कि अपन आकाशवाणी में। तो इस प्रकार का आकाशवाणी में इनोवेशन किया जा सकता है
0: जी। आपने सर उसी प्रश्न का जवाब दिया जो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि जो वर्तमान परिदृश्य है, डिजिटल टाइम है, ये इस डिजिटल समय में हमें क्या क्या परिवर्तन लाने हैं ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। और जैसा आपने बताया पॉडकास्ट का, तो हमने ये सिलसिला सर शुरू भी किया है, और जो आकाशवाणी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें पॉडकास्ट और अलग अलग माध्यमों से जो नए तरीके हैं तो उसके माध्यम से प्रसारण सुनिश्चित किया जा रहा है, और प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए FM चैनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। बदलते समय के साथ जो तकनीकी आवश्यकता है उस युग में हम लोग भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, हम सभी जानते हैं कि आपदा के समय पर, विशेष तौर पर जब बाढ़ या सूखा की बात आती है, आकाशवाणी ने आपदा प्रबंधन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन तक राहत और रसद पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विशेष कार्यक्रम है मन की बात, वो भी वो आकाशवाणी के माध्यम से ही शेयर करते हैं।
1: जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है
0: जी,
1: एक तो क्या है कि आकाशवाणी का पहुंच बहुत ज्यादा लोगों में है
0: जी, लगभग 100% क्षेत्रों तक कवर करते हैं, और जियोग्राफिकली 92% क्षेत्र को हम कवर करते
1: जी
0: हैं।
1: तो उसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा
0: जी,
1: 1971
0: जी
1: जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
0: जी,
1: मैं बहुत छोटा बच्चा था
0: जी,
1: लेकिन तब भी मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि तब तो कुछ भी हमें पता नहीं लगता था केवल आकाशवाणी पर सुनते थे कि अच्छा इधर ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी लेनी पड़ती थी, विशेषकर राजस्थान में।
0: जी हाँ सर, बिल्कुल।
1: और हम छोटी ऐसी जगह रहते थे, घर की बिजली भी बंद करनी पड़ती थी रात को, तो इसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, आजकल भी कभी भी कोई जैसे अलर्ट होती है उसका आकाशवाणी के थ्रू सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है अलर्ट। और वो मैसेज क्या होता है कि कहीं आदमी चल भी रहा है तब भी उसको पता चल जाता है कि यह हुआ। उसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था गुजरात में
0: जी।
1: और उस समय मैं अहमदाबाद से भोपाल लौटा था
0: जी।
1: भोपाल में लौट के मैं रास्ते में था, आकाशवाणी को सुना तो पता चला कि भूकंप है, हल्के झटके भोपाल में भी आए, मुझे तुरंत चिंता हुई
0: जी।
1: तो इस प्रकार की है
0: जी।
1: सूचना जल्दी पहुंच जाती थी
0: जी।
1: दूसरा एक ये एग्जांपल जैसे मन की बात है
0: जी।
1: तो इस बार 134वां एपिसोड था मन की बात का, प्रधानमंत्री जी का वो हमने हमारे संस्थान में उसको लाइव सुनने के लिए रखा था, विशेषकर किसान भाइयों के लिए। उसमें 200 करीब किसान भाइयों ने भाग लिया था और उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल साहब ने भी शिरकत की थी। उन्होंने न केवल हमारे संस्थान के जो मशीनें डेवलप हुई उसके बारे में जानकारी ली थी, बल्कि मन की बात का भी सुना था और उसके साथ किसानों के साथ भी उसको शेयर किया था और इम्पोर्टेंस बताई थी। तो मेरा ये कहना है कि उसकी एक जैसे आप मन की बात का सुनेंगे कि 134 एपिसोड हो गए हैं, तो ये एक पेनिट्रेशन शो करता है। दूसरा, उसमें भी इनोवेशंस आपने देखा होगा कि शुरुआत के जो एपिसोड थे वो केवल रेडियो पर सुनाई देते थे, अब आप चाहे तो उसको टीवी पर भी दिखा सकते हैं, उसमें विजुअल्स भी ऐड किया गया, तो ये भी आकाशवाणी का एक इनोवेशंस है। तो यही मैं आपकी जानकारी में शेयर करना चाहता था और ये भी कहना चाहता था कि आकाशवाणी की अभी भी काफी रिलीवेंस है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आज इतने अधिक मीडियम आ गए, मोबाइल पर वो आ गए, ऑप्शंस आ गए, लेकिन फिर भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
0: हमारे श्रोताओं के लिए सर कोई संदेश आप देना चाहें?
1: श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि आप न केवल आकाशवाणी से जुड़े रहें, बल्कि आप अदर मीडियम्स जो भी है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ जुड़े रहें। और ये विशेषकर ये भी कहूँगा कि दूसरे मीडियम पर तो सूचना जो मिलती है उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी सूचनाओं को जांच करके ही उसको प्रसारित करता
0: उसकी एक्यूरेसी है।
1: तो उसके लिए आप रिलायबिलिटी की वजह से भी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं
0: जी। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को कि कृषि विकास और यंत्रीकरण के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि थे सीआर मेहता साहब, इन्होंने हमें बताया कि रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि किसानों के जीवन में परिवर्तन का भी साधन रहा है। आशा है चर्चा हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को अपनाने के लिए उनको मार्गदर्शन मिलेगा। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और प्रतिभागिता सुनिश्चित की।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय था कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीआर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की थी चंद्रशेखर शर्मा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जयदीप साहनी का लिखा, संगीत सलीम सुलेमान का। आजा नचले फिल्म का ये गीत है जिसे आवाज़ें दी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

ये गीत जब भी मैट फिल्म से है, जिसे गाया मोहित चौहान ने, इरशाद कामिल के बोलों को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

0: मोहित चौहान की आवाज में गए जब वी मेट फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। शाम के 6:30 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, मध्य प्रदेश चीतों का नया घर। मध्य प्रदेश के कूनो का प्रोजेक्ट चीता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। वर्ष 1952 में हमारे देश से रफ्तार के बेताज बादशाह चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दशकों तक हमारे जंगल इस अनोखी दहाड़ को तरसते रहे, लेकिन फिर आया साल 2022 जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से भारत की धरती पर चीतों की सफल वापसी हुई है, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय लिख दिया है। इस महाअभियान को जमीन पर उतारने और आगे बढ़ाने में हमारे हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। सूबे के संवेदनशील और विकास परक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कूनो नेशनल पार्क को न सिर्फ चीतों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना रही है बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। चुनौतियां बड़ी थीं, मौसम नया था और दांव पर थी देश की साख। इस पूरे मिशन को जमीनी स्तर पर संभालने, चीतों की 2400 घंटे सुरक्षा करने और कूनो के जंगलों में उनके कुनबे को बढ़ाने के पीछे वन विभाग की एक समर्पित टीम है और आज उसी टीम के कप्तान यानी प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी श्री उत्तम कुमार शर्मा जी हमारे साथ सीधे कूनो से इस रेडियो चर्चा में जुड़े हैं। उत्तम जी, रेडियो पर हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: उत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में जब कूनो में चीतों को छोड़ा था, तब से अब तक ये प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है और सबसे बड़ी सफलता क्या रही है?
2: ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चीता जो हम लोगों ने आज से 70 साल पहले खो दिया था, उसको 17 सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस भारत देश लाया गया। भारत देश में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाके उसको छोड़ा गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 8 नामीबिया से चीते माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर को लाए गए थे। उसके बाद 12 और चीते साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाए गए और अभी हाल ही में 9 चीते बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कुल 29 चीते हम लोगों के अफ्रीका के अलग अलग 3 देशों से लाए गए हैं, उसमें से 20 आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोजेक्ट की कही जा सकती है इस लगभग लगभग 4 साल के कार्यकाल में, वो ये कि 33 चीते भारत की धरती पर जन्म हुए हैं और यहाँ फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास में आज की तारीख में भारत में 53 चीते हैं। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कूनो के अतिरिक्त जो इसकी दूसरी साइट है गांधी सागर सेंचुरी, वो भी पिछले साल हमने शुरू की है और 3 चीते, 2 नर 1 मादा गांधी सागर में पिछले साल में वहां भेजी गई है। इस प्रकार 50 चीते कूनो में और 3 चीते गांधी सागर सेंचुरी में इस वक्त मौजूद है। और जिन उद्देश्यों के लिए को लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, हमें लगता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। जब भी किसी जानवर को किसी दूसरे प्रवास में विस्थापित किया जाता है तो उसकी अनुकूलता पर एक सवाल उठता है। जो चीते कूनो से हमारे देश में विस्थापित किए गए थे और जिन चीतों का जन्म कूनो में ही हुआ, वे दोनों ही किस प्रकार से अब भारत की स्थितियों में, विशेषकर कूनो की परिस्थितियों में ढल चुके हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
2: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोजेक्ट है इस सेंस में कि ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है किसी भी बड़े कार्निवोर का। इससे पहले कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था, तो ये पहली बार प्रयोग किया गया। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में चीते लाए गए, जिसका मतलब ये होता है कि मौसम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जब वहां गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है और जब वहां सर्दी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। तो चीतों के लिए अपने आप को उस प्रकार से विपरीत मौसम में ढालना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो लगभग पहले साल में इस प्रकार की चुनौतियां रही, चीतों के लिए भी चुनौतियां रही और हम लोग भी जो इसमें नए थे मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा इतिहास भारत देश में मौजूद नहीं था, क्योंकि 1952 के बाद में यहाँ चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस भी वन विभाग के पास में नहीं था। तो उस शुरुआती दौर के बाद से चीतों ने अपने आप को बहुत तेजी से यहाँ के वातावरण में ढाला है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की धरती, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के को प्रेडेटर, यहाँ के प्रे, उन सब में चीतों ने बहुत तेजी से अपने आप को यहाँ पर ढाला है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। इन लोग इतना, हम लोग भी और जो भी चीता के विशेषज्ञ हैं वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी ये अडेप्टेशन होगा, लेकिन हुआ। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि चीता की ब्रीडिंग यहाँ पर बहुत सक्सेसफुली हुई। जैसे मैंने बताया कि 33 भारत में जन्मे चीता आज की तारीख में हम लोगों के पास में है, तो ये

0: तब से लेकर अब तक क्या-क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
1: कूनो में सबसे पहला शावकों का जन्म जो है 29 मार्च 2023 को हुआ था, जब ज्वाला नाम की एक फीमेल था ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। वो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समस्त भारतीयों के लिए एक बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि बड़ी छोटी सी अवधि में, लगभग 6 महीने के अंतराल में सक्सेसफुल ब्रीडिंग होके बच्चों का, शावकों का जन्म हुआ। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के सफलता के लिए और चीतों के एडेप्टेशन को दिखाने के लिए। तो सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल था। सामान्यतः जो है वो बच्चों की परवरिश माँ के ऊपर ही होती है, माँ बच्चों को संभालती है। हमारी तरफ से सिर्फ जो है वो जहाँ भी जरूरत हो, हमें लगता है कि कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता है, चाहे वो फीडिंग के रूप में हो या किसी और रूप में, वो हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं। पर ये प्राइमरीली माँ की ही जिम्मेदारी होती है और माँ उस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाती भी है। हम लोग विशेष रूप से जो असिस्टेंस मैंने देखा है पिछले 3-4 साल के अनुभव में अपने, मैंने जाना है कि यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है बड़ा सीवियर होता है, 47-48 डिग्री से तापमान जाता है, लू चलती है। तो चीतों, बड़े चीतों ने तो अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन जो अभी नए नए शावक गर्मी के मौसम में से पहली बार जब गुजरते हैं, उनको ये लू के कुछ दिन जो है वो देखने वाले होते हैं। मतलब वो हम मानते हैं कि उसमें कुछ घटना दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए हम लोग जहां भी चीता अपने बच्चों के साथ में है, वहां हम कोशिश करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, और हम लोगों ने अपने बाड़ों के अंदर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं, जिससे कि एक ठंडा इलाका थोड़ा सा हम डेवलप कर सकें, तो लू से जिससे शावक अब बच सकें और पानी का उपयोग कर पाए। ये असिस्टेंस हमारी तरफ से एक प्रयास किया गया है और हमें लगता है कि उसके हमें सफलता भी हमें मिली है, क्योंकि शावकों द्वारा उस इलाके का जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जहाँ पे स्प्रिंकल लगे, उसका उपयोग भी ज्यादा किया जाता है। जो पहला मौका था जब बच्चे हुए थे, तो सभी के लिए बहुत खुशी का पल था, और उसी पहले ज्वाला की पहले बच्चों में से जो सबसे पहली हमारी भारतीय जन्मी फीमेल शावक जो है वो अब लगभग 3.25 साल की हो गई है, मुखी के नाम से है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और विदेश में भी उसका नाम जाना जाता है कि मुखी भारत में जन्मी पहली चीता शावक।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल है कि भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी को वैश्विक संरक्षण जगत ने किस नजरिए से देखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की किस प्रकार से सराहना हुई है?
1: ये प्रोजेक्ट वैश्विक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी भी इतिहास में नहीं किया गया, जब एक जगह से कार्निवोर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया गया है। तो सभी की नजरें हम लोगों पे टिकी हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे कैसा चलता है, सफल होता है, नहीं सफल होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। हमारा जो एक्शन प्लान, चीता एक्शन प्लान भी बना है, वो भी इस प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन सही मायने में कहता है कि 25 से 30 साल के बाद ही किया जा सकता है। तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसमें गोल हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जरूर आकलन करते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो विश्व भी इसको उसी दृष्टि से देखता है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के गोल हैं क्या, उस दिशा में प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर भारत इसमें सफलता अर्जित करता है और उन गोल को अचीव करता है, तो ये टेम्पलेट होगा सभी देशों के लिए जो इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं। तो सभी की नजरें इस पे हैं, और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के गोल इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे, जिसमें मुख्यतः ये था कि अडेप्टेशन जल्दी हो जाए, ब्रीडिंग यहाँ पे हो जाए, और जो मोर्टेलिटी है, जो एडल्ट मोर्टेलिटी होती है, वो नियर नेचुरल लेवल पे पहुंच जाए, उसमें कोई अधिकता ना रहे, जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है वो मृत्यु दर प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि इन 3 एस्पेक्ट्स पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही आगे बढ़ रहा है। वो तीनों चीजें यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हमने उस दिशा में सही प्रयास किए हैं, वो सफल भी रहे हैं। और उसके अलावा जो और सफलता के आकलन हम लोग करते हैं कि भाई लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, यहाँ के हैबिटेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़े हैं और सफलता भी हमने प्राप्त की है। यहाँ पर लोगों का सहयोग हमको बहुत अच्छा मिला है, लोगों ने बहुत, लोकल लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से चीता आज यहाँ सुरक्षित भी है और सुरक्षित घूम भी रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, अच्छी संख्या में आते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी होती कि टूरिस्टों की संख्या में लगभग 4 साल पहले से

0: जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये इन सभी पैरामीटर पे जो इसकी सफलता का आकलन करेंगे, उन सभी पैरामीटर पे हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सभी की नजरें उस पर हैं कि क्या एक व्यापक रूप से, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये प्रोजेक्ट भारत में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है।
1: जी सर, अभी तक हमने बात की अडॉप्टेबिलिटी की, अडॉप्टेबिलिटी चीतों की कूनों के वातावरण से, कूनों के परिस्थितियों से, लेकिन एक अडॉप्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कूनों में मौजूद जैव विविधता, यानी पहले से जो जानवर वहाँ मौजूद हैं। कूनों में पहले से तेंदुए हैं, लकड़बग्घे हैं, इन पुराने निवासियों और नए मेहमान यानी चीतों के बीच किस प्रकार से तालमेल रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: यहाँ पे कूनों में तेंदुए की काफी अच्छी संख्या है, लकड़बग्घा हाइना उसकी भी संख्या अच्छी है। और एक सबके मन में शुरुआत में ये डर था कि तेंदुए के साथ में चीता का इंटरेक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में जहाँ पे भी चीते हैं, ये कहा जाता है कि लगभग लगभग 10% चीतों की मृत्यु तेंदुए की वजह से होती है, तेंदुआ चीता के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक एप्रिहेंशन सबके मन में था, लेकिन हमारा जो पिछले सालों का अनुभव है उसमें यह है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, चीता लेपर्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, हाइना के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। चीता एक स्मार्ट एनिमल है, वो सर्वाइवल जानता है और लेपर्ड के साथ कैसे रहना है, लेपर्ड के बीच में कैसे रहना है, इसको वो पूरी भली भांति समझता है। तो इंट्रैक्शन हो रहे हैं, यदा कदा कभी नेगेटिव इंट्रैक्शन सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से चीता को यहाँ पर ऐसा खतरा है कि वो सर्वाइव नहीं था, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भी बात है। एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट है हमारे, अगर हम इस कूनों की बात करें तो कूनों में मुख्यतः ग्रासलैंड का एरिया है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में जंगल को सुरक्षित करने की काफी प्रयास किए हैं, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के प्रयास किए हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, ग्रासलैंड डेवलप किए हैं, उसका फायदा ये हमको मिला है कि जो स्पीशीज यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कभी नहीं थे या बहुत पहले कभी हुआ करते थे, उन स्पीशीज की वापसी हुई है। अभी हाल ही में हमको फॉरेस्ट आउलेट यहाँ देखने को मिला, जो इस कूनो लैंडस्केप में कभी पहले नहीं देखा गया था। पहली बार हिस्टोरिकली वो फॉरेस्ट आउलेट, जो कि बहुत ही रेयर बर्ड है और 90 के दशक में इसको एक्सटिंक्ट भी घोषित कर दिया गया था, वो कूनो में हमको मिला है। इसी प्रकार से भेड़िया, इंडियन वुल्फ जो है, वो कूनो में बहुत पहले कभी, 20 साल पहले कभी रिपोर्ट हुई थी, जो हमें अब वापस देखने में मिल रही है। और इसी प्रकार से वाइल्ड डॉग की रिपोर्टिंग भी कूनो लैंडस्केप में कहीं नहीं थी, उसकी भी रिपोर्टिंग हमको अभी हाल ही में हुई है। इस प्रकार नए नए जानवर जो कभी यहाँ पे लोकली विलुप्त हो गए थे, वो वापस इस लैंडस्केप में हमको दिखाई देने लगे हैं। तो ये सिर्फ चीतों के ही इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, चीतों का इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है, ये जो पुराने लोकली विलुप्त जानवर थे उनके वापस लाने के लिए भी। तो इन सबके बीच में जो है अब चीता भी है, और मुझे लगता है कि चीता बहुत अच्छे से इनके साथ में एडजस्ट करेगा।
1: कुछ चीतों की मौत ने थोड़ी चिंता बढ़ाई थी, तो बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल टीम किस प्रकार से काम करती है ताकि चीतों को सुरक्षित रखा जाए?
0: इस पूरे प्रोजेक्ट में वेटरिनेरियन की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीता को नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग है, चीता एक फ्रेजाइल एनिमल है, नाजुक जानवर है, जिसको अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत ज्यादा समय वो नहीं देता कि हम उसे बचा सके। तो एक बहुत हमारी वेटरिनरी टीम की बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। मेरे दो वेटरिनरी डॉक्टर जो है, वो जहाँ हमारा मुख्य चीता केंद्र है पालपुर में कूनो के अंदर, वहां पर 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल में रही है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास एक मोबाइल हॉस्पिटल भी है, एक गाड़ी को हमने हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया है, जो हमेशा तैयार रहती है, और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग किसी भी जगह में जहाँ कहीं इमरजेंसी हमें चीता की पता चलती है, हम पहुंच सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है, 4 साल से कड़ी मेहनत उन्होंने की है, और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे चीता को कोई बात हो और हम लोग ना पहुंच पाए हो। हम लोग सही समय पे पहुंचे हैं और हमने काफी प्रयास किए। तो हमारे पास में सभी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं, जो एक हॉस्पिटल में होने चाहिए या चीता का वेटरिनरी ट्रीटमेंट करने के लिए होने चाहिए, वो हम लोगों के पास में है। आपको सरकार ने इसमें पूरी खुली छूट दी है कि किसी भी प्रकार की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पूरी उस दिशा में हम लोग ध्यान

0: दवाइयाँ, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग को चाहिए रहती है वो हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है और हम लोग बड़े सजग हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इतने बड़े जंगल में चीतों की निगरानी के लिए कौन-कौन सी आधुनिक तकनीक काम आ रही है?
0: हर एक चीता हमारे द्वारा रेडियो कम सेटेलाइट कॉलर किया गया है, मतलब एक ऐसा कॉलर पहने हुए है जिसमें रेडियो सिग्नल भी आता है और सेटेलाइट से भी उसकी लोकेशन ली जा सकती है। हम लोगों के पास में एक मोबाइल में ऐप रहता है जिससे सेटेलाइट की इंफॉर्मेशन आती है और रेडियो सिग्नल ट्रैक करने के लिए एक रेडियो एंटीना होता है जिसे हमारी मॉनिटरिंग टीम जो है वो अपने साथ में लेके चलती है। तो कोई भी चीता हमारे खुले जंगलों में अगर है तो उसके पीछे एक टीम सतत रहती है, 24/7 एक टीम रहती है जो उसकी स्थिति मॉनिटर करती है और उससे एक उचित दूरी पे बना के रखती है ताकि चीता को भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, लेकिन चीता लोकेशन में रहता है। और यदि कभी चीता का मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियो सिग्नल की एक निश्चित सीमा होती है, 500 600 800 700 मीटर तक वो पकड़ पाता है, कई बार चीता का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, नदी क्रॉस कर जाए, पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए, जहाँ टीम नहीं पहुंच सकती, तो फिर हम सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से उसकी लोकेशन प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग कैमरा ट्रैप का बड़ा रेगुलरली उपयोग करते हैं। कैमरा ट्रैप हम लोग लगाते हैं पूरे अपने जंगलों में, जिससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें पता चलती रहती हैं। साथ ही जो चीतों के बाड़े हैं, हमारे पास में लगभग 1,000 हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने फेंस किया हुआ है प्रेडेटर प्रूफ फेंस से। और जब हम कहते हैं कि चीते बाड़े के अंदर हैं, वो इसी फेंसिंग के अंदर रहते हैं, जिसे हम सॉफ्ट रिलीज बूमा भी बोलते हैं। 1,000 हेक्टेयर को हमने 14 छोटे छोटे बाड़ों में बांटा गया, मतलब 70 से 80 हेक्टेयर का एक क्षेत्र होता है जिसमें एक चीता रहता है। तो इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए हमने हाई मास्ट कैमरा लगाए हुए हैं। ये कैमरा नाइट विजन से भी वो है, रात में भी देख सकते हैं और पूरा हमारी फेंसिंग और बाड़ों की निगरानी जो है इससे हो पाती है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि प्रोटेक्शन में इनके मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और के रिजल्ट भी हैं कि हर चीता हमारा बेहतर मॉनिटर हो पाता है।
1: सर, अभी हमारी बातचीत में आपने जिक्र किया कि गांधी सागर अभयारण्य को चीतों का दूसरा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, और आपने बताया कि वहां शायद कुछ चीते छोड़े भी गए हैं। अभी क्या कुछ उसके लिए प्लानिंग चल रही है और कितने चीते वहां पर रखे जाएंगे, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
0: गांधी सागर जो सेकंड चीता इंट्रोडक्शन साइट है, ये लास्ट ईयर शुरू हुई है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे दो चीते पिछले साल 20 अप्रैल को छोड़े थे, दो मेल चीते छोड़े थे। उसके बाद 17 सितंबर को एक फीमेल चीता और गांधी सागर में छोड़ा गया। इसको वजह से तीन चीते गांधी सागर में हैं और वो एक फेंस्ड रिजर्व के रूप में एक प्रयोग किया जा रहा है। फेंस रिजर्व मतलब आप जंगल का एरिया घेर देते हैं, वहां पर करीबन 68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फेंसिंग से घेरा गया है। ये कुछ अफ्रीकन, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के फेंस रिजर्व होते हैं और चीता इन्हीं फेंस रिजर्व में साउथ अफ्रीका में स्थापित भी हुआ था प्रारंभिक दशा में। तो ये फेंस रिजर्व कॉन्सेप्ट पे गांधी सागर का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार वहाँ फेंस रिजर्व के अंदर करीबन तीन चीते हैं, दो मेल एक फीमेल, और भविष्य में भी उनकी संख्या में इजाफा हम लोग करेंगे जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा। न सिर्फ गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ेगी बल्कि और जो साइट्स हैं, हम लोगों ने देश में 10 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। जब शुरुआती दौर पर चीता इंट्रोडक्शन की बात होती थी तब 10 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें से मध्य प्रदेश में एक नौरादेही टाइगर रिजर्व है और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में है। तो अभी ये दो साइट भविष्य में बहुत जल्दी हम लोगों की शुरुआत करने का है कि चीतों का विस्तार इन दोनों साइट्स में भी हो और हम लोग जो है 4 साइट चीता के लिए डेवलप कर सके। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी चारों जगहों में मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए चीता का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। हमारे पास में तीन अलग अलग देशों से चीते लाए गए हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से। तो तीन जो हमारी यहाँ पे भी साइट्स बनेंगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि तीनों देशों के जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इन साइट्स पे हो जाए। वो कितना फिजिबल होता है, कैसे होता है, ये भविष्य में जब हम निर्णय लेंगे तभी ये डिसाइड हो पाएगा।
1: जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीता आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुका है। अगले 5 साल में ये कहाँ होगा? श्रोताओं को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?

0: मैंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट एक अपने आप में कि यूनिक प्रोजेक्ट है, सारी दुनिया की निगाहें इस पे हैं। साउथ अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट 70 के दशक में ऐसे शुरू हुए थे, चीता इंट्रोडक्शन के, नामीबिया से चीता साउथ अफ्रीका लाए गए थे और लगभग 20 साल तक वो पूरा फेलियर रहा, कहीं भी चीता स्थापित नहीं। 90 के दशक में फिर फेंस रिजर्व के भीतर उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद उन्हें तो सफलता उसमें मिली है। तो एक यूनिक प्रोजेक्ट एक की हम शुरुआत कर रहे हैं, हम एक ओपन फॉरेस्ट में चीता दूसरे कॉन्टिनेंट से लाके यहाँ पे एक अलग तरीके का इतिहास यहाँ पे की बात हो रही है। तो विश्व इसको बहुत पैनी नजरों से देख रहा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पहचान बनाने में ये सफल भी हुआ है कि जो भी काम कोनों में हो रहा है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 सालों में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जैसा मैंने बताया कि 4 साइट हम लोगों की डेवलप हो जाए, कुलू, गांधी सागर, बन्नी और नौरादेही, ये 4 साइट हमारी डेवलप हो जाए और इन 4 साइट्स में चीतों की संख्या जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन चीता की वहां हो। उसके बाद में फिर हम और बाकी साइट्स के बारे में भी विचार करेंगे। तो अभी 5 साल में हमारा उद्देश्य यही है कि चारों साइट्स पे चीता पॉपुलेशन बने और बढ़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मेरा श्रोताओं से बस यही कहना है कि ये चीता, भारत में चीता की वापसी सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी नहीं है, ये भारत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को वापस लाना है। हमने आजादी के बाद से कोई भी जानवर ऐसा बड़ा मैमल, बिग मैमल हमने नहीं खोया, सिर्फ एक चीता था जो हमने 1952 में खो दिया। और एक कहते हैं कि सबके मन में एक ऐसी बात थी कि ये हमारा चीता हमारी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है, ऐतिहासिक काल से चीता हम लोगों के रहा है। तो इस चीता को वापस लाना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है, उनके द्वारा यहाँ वापस लाना न सिर्फ चीता को वापस लाना है बल्कि हमारी खोई हुई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाना है। तो इस ये सिर्फ किसी एक प्रदेश की विरासत नहीं है, किसी विभाग की नहीं है, तो पूरे जितने हमारे देशवासी हैं उन सबकी एक विरासत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको वापस लाके दी। तो हम सबका ये दायित्व होता है कि इस विरासत को हम दोबारा ना खोने दें, जो भी अपने स्तर से हम संभव प्रयास कर पाए, जो भी मदद कर पाए उसकी हमें उनसे अपेक्षा रहेगी।
1: एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई उत्तम जी आज आपसे बात करके, न सिर्फ हमें बल्कि हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं को प्रोजेक्ट चीता की उन बारीकियों और जमीनी हकीकतों को जानने का मौका मिला जो कि अक्सर अखबारों की सुर्खियों से भी पीछे छूट जाती हैं। श्रोताओं, आज की इस बातचीत से एक बात और साफ हुई कि धरती पर दौड़ते ये चीते सिर्फ एक वन्य जीव परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि यह नए भारत के उस ऊंचे संकल्प का प्रतीक है जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, और यह हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है कि हम प्रकृति को उसका पुराना गौरव लौटा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा चीता स्टेट पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनेगा। उत्तम कुमार शर्मा जी, आपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की, इसके लिए हम पूरे आकाशवाणी परिवार और करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: श्रोताओं, तो ये थे उत्तम कुमार शर्मा जी, कूनो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस सार गर्भित चर्चा में भाग लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, वार्ताकार अभिषेक कटियार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
3: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार
7: समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
8: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
7: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा होगी। 7:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। 8:35 पर फिल्म संगीत। 9:30 बजे साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां।

गीत संगीत और समय के साथ सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 बजे। आरती तिवारी के गए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम लोक संगीत में समय रहेगा सुबह 9:15। 9:30 बजे सुनिएगा सिंधिया जी सुरहान। इसमें कल आप सुन सकते हैं उचित पोषण और खाद्य सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर ज्योति केशवानी से बातचीत। 10:00 बजे जिले की चिट्ठी। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में कन्नड़ गीत सुनिएगा 10:05 पर। सुबह 10:30 बजे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका भाग 5 आप सुन सकते हैं। 10:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में 7:30 से 8:00 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो ग्राम सभा, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीनानाथ घोरे। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए जानकारी दे दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसे सुन सकते हैं आप कल सुबह 11:00 बजे। 12:00 बजे आग की फरमाइश संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 2। 1:00 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी शिवपुरी से ही सुनिएगा 1:30 बजे लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 2:00 PM, शाम 5:33 और शाम 6:00 बजे। बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 PM, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:30 बजे। रात 8:00 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर फिल्म संगीत। रूपकों को अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 बजे और रात 10:00 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख

0: मांडवी ने और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तंबाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
2: हम एक अभियान नहीं चला, कैंसर हो उसके पहले कैंसर रोकने का, और वो अभियान है गुटखा, तंबाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू, जानबूझ के विनाश के सामान क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? कई आते हैं कम उम्र के बच्चे लीवर खराब हो, क्या तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता? माता पिता कहाँ से पैसे लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या करेगा परिवार तुम्हारा? सारे माता पिताओं को, समाज को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, पूरे प्रदेश में चलाए नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गाँव में शराब, दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने देश भर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव

0: 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली यह अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया, प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सटई नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला संबंधी अपराधों की विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेशम पालन और वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां तैयार कर रहे हैं। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जिले में जल निगम द्वारा संचालित जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया और बहन का, गीता बहन और
1: मनीषा बहन की राम राम, राम।
0: और बहन देखो क्या हाल चाल है
1: भैया। बहन बढ़िया है और आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और देखो हम तो जो कह रहे हैं कि जो समय होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं।
1: और का बहन सही कह रही हैं आप।
0: जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं
1: रहे। और का
0: कहवे को मतलब ये है कि परिवर्तन जो है प्रकृति को नियम है।
1: और का बहन
0: समय के संगे सब कछु बदल जाते, अपनी सोच बदल जाते हैं।
1: और का
0: अपने विचार बदल जाते हैं। अपन घर परिवार की बात देखें भैया, तो पहले की बात अगर अपन करें तो अपने देश में, अपने समाज में, अपने परिवार समाज देश में मोड़ा मोड़ियन की शिक्षा को लेके मतभेद होता तो।
1: और का
0: मोड़ियन का जे तो पढ़वो लिखो कछु सिखाओ नहीं जाता तो।
1: और
0: जात भी हती तो दो पांच क्लास के बाद इनको स्कूल जानो बंद कर देते।
1: और
0: मोड़न की शिक्षा भी जोर दो जाता। अब भैया मोड़ा मोड़ी तो एक ही समान है।
1: और कभी सही कह रही हैं।
0: अब लोगों की सोच में बदलाव आ गया। आज अपन देख रहे कि अपने जो बेटियां हैं, अपनी जो मोड़ियां हैं, वो घर परिवार समाज और देश को नाम रोशन करने
1: सही
0: हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो या भाई किसान खेतीबाड़ी का क्षेत्र हो, हर जगह पे जहाँ भी वो जाते हैं भाई जीत को परचम फहराते
1: हैं। सही
0: और जहाँ से अपन सभी को जो संदेश मिलते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं
1: है। और
0: पर कछु लोग उनको मानने का होता है कि बेटे बुढ़ापे की लाठी होते हैं।
1: और
0: पर आज अपन देख रहे हैं कि बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माता पिता के नजदीक होते हैं, उनकी भावनाओं को
1: समझते हैं
0: और इनको सहारा भी बनाते हैं।
1: और का भाई बहन सही कह रही। तो बालकन के लाने अपने लाने जन्म से सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहिए बन के लाने। और लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। क्या कह भैया बहन, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को स्थापित करना चाहिए। समानता
0: सही कह रही है कि देखो कहा है कि अपन जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आज अपन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
1: और
0: जब बेटियों को बचाएंगे तभी तो इन्हें पढ़ा
1: पाएंगे। सही कह रही
0: हैं। अपन सभी जानते हैं कि एक शिक्षित संस्कारित बेटी ही सुंदर भविष्य की निर्माता
1: होती है। और
0: सृष्टि में यदि ईश्वर ने सबसे ज्यादा सुंदर कछु बनाओ है तो वो है माँ।
1: माँ सही कह रही
0: है। आज की जो बालिका है वो कल की भावी माँ है।
1: माँ है। और
0: अब एक शिक्षित माँ जब होगी तो सब परिवार शिक्षित होगो।
1: और का
0: पर यदि माँ ही अनपढ़ रहेगी तो परिवार भी अशिक्षित होगो।
1: सही कह रही।
0: परिवार अशिक्षित ना रहे, अनपढ़ ना रहे जाके लाने माँ को पढ़ानो
1: बहुत जरूरी है। और का
0: तो हम तो ऐसे भैया बहनन से यही कहेंगे कि भैया जिन लोग ने अभी तक जी सोच नहीं बदली है वो भी अपनी सोच बदल ले। काहे से कि अब बेटा बेटी एक समान है और दोनों को असमान अधिकार है जिंदगी जीवे को, तो इन्हें पढ़ाई लिखाई के लाने आगे पढ़ने को मौका दें और कन्या भ्रूण हत्या का पुरजोर विरोध
1: करें।
0: अपन देख रहे हैं कि कैसे कि लिंग अनुपात जो है वो गड़बड़ा रहा है।
1: मोड़न
0: अगर 1000 मोड़ियां हैं तो इनके पीछे जो मतलब 1000 अगर मोड़े हैं तो
1: 800
0: मोड़ियां हैं।
1: सही कह रहे
0: हैं। देख रहे अपन हर तरीका से परेशानी हो रही है। अगर मोड़ियां ही नहीं होंगी भैया तो लोग अपने घर में बहू कहाँ से लाएंगे।
1: सही
0: तो ये सृष्टि का चक्र है वो
1: कैसे चलेगा। और का
0: तो इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बेटा बेटी जो है वो एक समान है। और देखो अपने यहाँ संविधान में भी अपने को शिक्षा का अधिकार मिला है। तो बिना जे शिक्षा के अधिकार से अपन और उनको वंचित नहीं करना है। और कोशिश यही करनी है कि अपनी मूढ़ियां पढ़े लिखे और आगे
1: बढ़े।
0: अब जमानो बदल रहा है, पहले वाली बात नहीं है कि घर की चार दीवारी में ही मोड़ियन को जीवन है। तो
1: अपने
0: हक के लड़ने के लाने भी इनको पैरों पे
1: खड़ो करना जरूरी है।
0: और कर्तव्य कहाँ है इनके, का जिम्मेदारी है,
1: माँ बाप का पूरा करना चाहिए।
0: और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारी को सार्थक बनाने के लाने अपन को घर समाज और देश में ये बदलाव तो लाना ही पड़ेगा।
1: सही
0: और हमेशा ये बात को याद रखना है कि एक शिक्षित खुशहाल बेटी ही हमारे घर परिवार समाज और देश को भविष्य
1: है। और
0: जो घर परिवार में बेटियों को मान सम्मान नहीं होता वो घर परिवार समाज तरक्की नहीं करता। हमारी संस्कृति में तो प्राचीन काल से अपन देख रहे हैं कि कन्या पूजन को महत्व रहा है तो ना, बेटियों को कन्या का स्वरूप मानो जाते हैं। फिर जब इतेक अपन उनकी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, इनके पांव पूज रहे हैं, तो फिर भेदभाव काहे के लाने है ना। एक तरफ तो आप कन्या को पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कन्या भ्रूण हत्या जगन अपराध कर
1: रही
0: है कन्या को। जन्म लेने से पहले ही घर में ही मार दे रहे हैं,
1: और तो
0: ये स्थिति ना बने जाके लाने, अपनी सोच को अपन समझ को
1: बदलना चाहिए।
0: तो भैया एक अच्छा विभाग बन के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने में अपन सहयोग
1: दें।
0: और देखो मीनाक्षी बहन, अपन ने जो बात तो कर ली है मुड़ियन के लाने,
1: और
0: अब अपन कछु बात कराते हैं भाई किसान भैया बहन से फसल
1: की। सही कह रहे हैं,
0: देखो अपन जो जाना

0: हैं कि जो भाई किसान भैया हैं खेती बाड़ी कराते हैं और चाहते हैं कि बिने जैसे अच्छे से मतलब जो भी कछु वो उपज ले रहे हैं बासे बिने लाभ मिले,
1: लाभ मिले।
0: पर अपन देखत कहाँ है कि भैया खेती बाड़ी में भी बोनी के लाने बैठे तो पानी नहीं पड़ो,
1: सही कह रहे हैं,
0: और बीज बो गए और फसल तैयार है कटवे के लाने तो ओला पड़ गए, ज्यादा बारिश हो गई,
1: और
0: तो कुल मिला के कभी कभी अब जो किसान भैया हैं कर्ज लेके खेती कराते हैं तो बिने तो मुलक नुकसान हो जाते हैं,
1: और का
0: तो जय के लाने अब माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू करी फसल बीमा योजना।
1: और का बहन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू करी गई हती, जाको उद्देश्य किसान भैया को प्राकृतिक आपदाओं कीट और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान पे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। और बहन जा योजना को मुख्य उद्देश्य है फसल नुकसान होवे पे किसान भैया को आर्थिक सहायता देवो और किसान भैया की आय को स्थिर बनावो और खेती में निवेश और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देवो, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करवो है। और बहन खरीफ फसलन के लाने जो प्रीमियम अपने भैया को जो देते हैं तो खरीफ फसलन में जो प्रीमियम होते हैं वो 2% होते हैं और रवि फसलन में 1.5% होते हैं और वाणिज्य और बागवानी फसलन में 5% को होता है।
0: कहवे को मतलब जे है कि फसल को सुरक्षा कवच है जी,
1: और का बहन
0: जिसे अब जो किसान भैया बहने हैं निश्चिंत होकर खेती कर सकते हैं,
1: और का बहन सही कह रहे हैं,
0: की राशि रखी गई है वो भी आप बता रही बहुत ही कम है,
1: और का
0: खरीफ रबी फसल जो भी फसल अपन कर रहे हैं आपको बीमा जरूर कराना चाहिए, कैसे कि अगर आप समय पे बीमा कराएंगे तभी ये योजना को लाभ ले
1: सकेंगे,
0: और प्रत्येक राशि खाते में भी टाइम पे होनी
1: चाहिए, और का
0: ना जो प्रीमियम राशि कटनी है
1: खाते में होना चाहिए, और का
0: सारी जरूरी खसरा खतौनी जो भी दस्तावेज लगा
1: हाँ,
0: है
1: तो वो अपने देन
0: देके अपन आवेदन कर सकते हैं,
1: और का
0: और जब अपना आवेदन स्वीकार हो जाते हैं मान हो जाते हैं तो बाको संदेश भी आजकल अपन को मोबाइल पे मिल जाते हैं और ये राशि जो है वो भी सीधे अपने खाते में
1: आते हैं। और
0: तो भैया जब इतनी अच्छी योजना पे किसान भैया बहन के लिए चल रही तो अब काहे नहीं किसान भैया बहने अपनी फसल को सुरक्षा का कवच दे कि ये फसल बीमा नहीं कराते,
1: और का बहन
0: बीमा जरूर
1: कराना चाहिए, काहे के आपदा तो बहन कहूं
0: गांव में आ जाती, प्राकृतिक आपदा पे तो कोनो को जोर है नहीं है, रोक नहीं सकता,
1: और का
0: पर अपन अपन फसल को तो सुरक्षित कर सकते, मान लो अगर फसल कमजोर हो गई है तो कछु हद तक तो अपन को बाकी भरपाई हो जाएगी,
1: हो जाते हैं
0: नुकसान है,
1: तो और कभी अपने भैया बीमा करवाते हैं तो इनको कहा है कि फसल पे जो नुकसान होता है तो बीमा के द्वारा अपने और का भरपाई हो जाता है, सही कह रहे हैं।
0: तो कुल मिला के जब भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है किसानों के हित में चलाई जा रही है, इनकी परेशानियों को समझ के चलाई गई है, तो ज्यादा से ज्यादा किसान भैया बहनों को ये योजना को लाभ
1: लेना चाहिए
0: और समय रहते हैं भाई खरीफ की रबी की ये जो भी आप उत्पादन ले रहे हैं वाकु बीमा जरूर
1: कराना चाहिए
0: और सभी जानकारी के संगे कराना चाहिए,
1: और
0: कैसे कि भैया अगर मैंने कुछ जानकारी सही नहीं दी तो अपन और उनको वाकु लाभ भी नहीं मिलेगा,
1: और का बहन सही
0: कह रही है। मनीषा बहन अब धीरे धीरे बेरा हो जा रही है कि अपन अपने कार्यक्रम से विदा ले लें,
1: और का बहन सही कह रही
0: है, सगा भैया बहनन का जे विदा कि राम राम, पर एक बात और कहेंगे कि भैया अब आवे वाली है बरसात,
1: और
0: तो जो बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर कोनो गड्ढे बड्ढे आपके घर के आसपास है कितना खुले भए पड़े हैं तो भी इन्हें भर दें,
1: और का बहन सही कह रहे हैं,
0: और लाइट मौसम में बदलाव आने से कीड़े पतंगे भी मुलक आ जाते हैं,
1: और का
0: तो इनको भी ध्यान रखें, मुलक छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े पे भोजन के माध्यम से भीतर चले जाते हैं पानी के माध्यम से, तो खावे पीवे की जो चीजें हैं
1: बिल्कुल
0: ढक के रखने चाहिए और हाथ डाल के कम हुई बर्तन में से पानी
1: नहीं निकालना चाहिए, और का बहन
0: खावे से पहले खाना बनाने से पहले अपने हाथों को परोसने से पहले अच्छे तरीके से साबुन से धोएं और सुरक्षित रहें सभी परिवार के सिंह हैं, अब पशुओं को भी ध्यान रखें। तो भैया जी बात के सिंह अब लेते हैं चौपाल से आज्ञा, तो सगे भैया बहन का जी गीता बहन
1: और मनीषा बहन की राम राम,
0: जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सब यही डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
4: किसानवाणी कार्यक्रम में किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगे भी बन काजे एक बार फिर से गीता बहन
5: और मनीषा बहन की राम राम।
4: देखो भैया अपन तनिक देर पहले ही बात कर रहे थे कि भाई किसान भैया ने इनको अपनी फसल को बीमा कराना चाहिए
5: और का बहन सही
4: और कह देखो अपन जो जानते हैं कि अपन जो देश है वो कृषि प्रधान है
5: सही कह रहे
4: और देश की अर्थव्यवस्था में किसान भैया का या कृषि का कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है
5: और का
4: और अपन जानते हैं कि जब अपन किसान भैया खुशहाल होंगे तब अपन देश तरक्की करेगा और अब किसान भैया खेती बाड़ी कराते हैं खुशहाल तब ही होंगे जब इनकी जो खेती है वो जीरो बजट
5: की होगी
4: यानी कम लागत हो और उत्पादन अधिक हो
5: और का बहन
4: अपन ये भी देख रहे हैं कि मुलक समय से भाई किसान भैया जो है वो भाई खेती में अच्छा उत्पादन लेवे के लाने लगातार अंधाधुंध जो है रासायनिक उर्वरक को उपयोग करते रहे जिसे कहा हो कि शुरू शुरू में तो बिना लाभ अच्छो मिल गाओ
5: और
4: जाके बाद में उनका उत्पादन कम होगा और लागत बढ़ गई
5: ऐसे
4: कितने महंगे आते हैं और जई के सिंगे जो भाई भूमि है जो खेत की मट्टी है वहाँ की भौतिक संरचना भी बदल गई वहाँ में मौजूद पोषक तत्व जो है नष्ट हो गए
5: और
4: बाकी जो जल धारण क्षमता है वो भी कम हो गई
5: उर्वरा
4: शक्ति कम हो गई अब किसान भैया सोच रहे कि भैया इतने अच्छी खाद भी डाली जाके बाद भी उत्पादन तो कम हो रहा है
5: और
4: अब जाके सब किसान भैया का जो ध्यान गया और बिन्ने सोची कि भैया जो तो रासायन मुक्त खेती अपन और उनको करना
5: चाहिए
4: जिससे भाई भूमि की सेहत भी सुधरेगी और अपन और उनको भी अच्छा
5: उत्पादन
4: मिलेगा जो भी अपन अनाज उपजाएंगे पौष्टिकता से भरपूर होगा कैसे कि अपन भी तो ये रासायनिक खादन से जो अनाज आ रहा है खा रहे हैं बीमार पड़ रहे
5: हैं
4: बीमारी अपन और उनको हो रही है तो किसान भैया को रुझान जो है वो प्राकृतिक खेती की ओर गाओ अब जन जागृति कराने की ज्यादा से ज्यादा किसान भैया जो हैं कछु देखो कछु भैया ने तो प्राकृतिक खेती करना शुरू
5: कर दी और
4: कछु अभी सोच विचार में लगे
5: भाई।
4: तो ज्यादा से ज्यादा किसान भैया ज्यादा से ज्यादा रकबे में प्राकृतिक खेती करें जाके लाने जो है किसानों में जन जागृति के लिए समय समय पे सेमिनार आयोजित कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है या विनय प्रशिक्षण भी दिया
5: जा रहा
4: है कृषि यंत्र भी विनय
5: जा रहे हैं
4: और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती होते हैं पूरी तरीका से प्राकृतिक ही होते हैं जैसे कि अगर अपन देखें तो जो खाद देते हैं वो गोबर और गौमूत्र
5: से और
4: अगर गाय को देसी मतलब देसी गाय है
5: और
4: तो ये खाद बहुत ही अच्छी मिलेगी अपने को
5: और
4: अपन जैसे तरीका से देखें तो अपन जो खेती है वो अगर प्राकृतिक रूप से करी जाएगी तो शुरू शुरू में उत्पादन जरूर अपने को कम मिलेगा पर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ जाएगा
5: और
4: भूमि की सेहत भी
5: अच्छी हो जाएगी और तो, अनाज जो उपजेगा वही पौष्टिक होएगा
4: हाँ जाके खा के अपन बीमार
5: नहीं पड़ेंगे और का
4: तो किसान भैया को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए कैसे कि कम से कम लागत में होते हैं कैसे कि सब हम कछु अपन को आप घर में मिल जाते हैं जैसे अपन खेती कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि भाई किसान भैया पशुपालक हैं अगर पशु पाल रहे हैं ये बात और है कि किसी के पास दो चार पशु हैं किसी के पास ज्यादा
5: है और
4: तो इनसे अपन को गोबर भी मिल जाएगा गोमूत्र मिल जाएगा बेसन मिल जाएगी बेसन अपने घर में होते हैं
5: और
4: नीम की पत्ती जो अपन बना रहे है पहले तो खाद तैयार करेंगे गोबर की और सड़ी हुई खाद तो वो भी अपन को मिल जाएगी उसके बाद अपन निदाई गुड़ाई करेंगे और कीट नियंत्रण करेंगे जैविक विधि से तो वो भी अपन को जाएगा बाकी अलावा बीज अमृत घन बीज अमृत ये सब हम कछु तैयार जो है भाई किसान भैया कम से कम लागत में अपने घर में
5: कर सकते हैं
4: इसीलिए कहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती होते हैं वो जीरो बजट
5: खेती
4: होती है और भाई किसान भैया को ज्यादा से ज्यादा रकबे में प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त

0: खेती जो है करनी
1: करना चाहिए। सही कह रही बहन आप,
0: जाके अपनी भूमि का जो सेहत है वो सही हो जाए। जमीनी स्तर से अपन और उनको सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहले भूमि का अपन खेत खाद डाल के अच्छा कर लें, बाकी बाद फिर अपन को बीज बोना है तो बाद ध्यान दें अच्छी।

0: फसल से उत्पादन अच्छे मिलो, फिर इनकी निदाई गुड़ाई करनो है, उनमें कीट व्याधि का नियंत्रण करना है, सभी कछु जैविक तरीका से करें, कटाई टाइम पे करें, देखभाल के करें, भंडारण करें, हर तरीका से सुरक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से अपने किसान भैया को लाभ मिलेगा।
1: और का बहन सही कह रही
0: है बहन जी, तो अपन ने बात करी अपने किसान भैया से प्राकृतिक खेती की। आप देखो अपन देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो समय आ रहा है बरसात
1: बरसात को सही कह रहे,
0: और जब बरसात को मौसम आता है, मतलब मौसम कोई भी हो जब आता है तो कछु चीजन में बदलाव तो होता ही
1: होता है, सही
0: चाहे वो अपने खावे पीवे को या अपनी दिनचर्या है बदल जाते हैं,
1: बदल जाते
0: हैं, और अपने संगे संगे अपने पशुओं
1: को भी, और
0: कि मौसम का असर तो समय पे होता है, अपन भी अपने तौर तरीके बदल देते हैं, खाने पीवे के, पहनवे ओढ़वे के,
1: अपनी
0: दिनचर्या बदल जाती है, तो वही तरीके से अपने जो पशु है इनको भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि मौसमी बीमारियों का बिन पे भी प्रभाव
1: पड़ता है, और
0: प्रभाव पड़ता है।
1: सही
0: अब जो कि बरसात आवे वाली है तो अपने जो पशुपालक भैया हैं बिने भी ये ध्यान रखना हो कि भैया अच्छी तरीके से इनकी देखभाल करें,
1: और
0: मौसमी बीमारी आएंगी जो बिन से अपने पशु को बचा सकें,
1: बचा सके
0: कि ज्यादा से ज्यादा समय तक सुरक्षित रहें,
1: और
0: बीमार नहीं, बीमार होंगे तो दोनों नुकसान होगा,
1: और का बहन सही
0: तो काम भी नहीं ले सकेंगे और इनकी बीमारी पे भी रुपया पैसा
1: खर्च होगा। और
0: तो हम सोच रहे हैं कि इनके लाने आज हम ऐसी एक भेंट वार्ता सुनवा दें, तो आज हम इनके लाने लेके आए हैं पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता जी को विषय है बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की उचित देखभाल। वार्ताकार भैया हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव जी, और जिनसे बात कर रहे हैं भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो चलो भैया सुनाते हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।
2: श्रोताओं नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं गर्मी अब धीरे धीरे जाने को है और बरसात का आगमन आने को है, तो ये बरसात और गर्मी का एक तरह से संधि काल है, और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम में भी बदलाव आता है और प्रकृति में भी बदलाव आता है, और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति जन यानी कि मनुष्य में जानवरों की प्रवृत्ति में भी बदलाव देखने को मिलता है। आज जो बातचीत का विषय है वो है बरसात पूर्व एवं आरंभिक बारिश में पशुधन की देखभाल। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर भगवती प्रसाद यादव हैं। वर्तमान में आप उपसंचालक का कार्य देख रहे हैं पशुपालन विभाग में, मूलतः सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब सभी सुनने वालों के मध्य में स्वागत है,
3: बहुत बहुत नमस्ते सभी को।
2: और जैसा कि विषय था कि बरसात पूर्व और आरंभिक वर्षा, ये वही समय लगभग चल रहा है।
3: बिल्कुल,
2: पशुधन किसान का एक ऐसा प्राणी है कि जो उसकी आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स है, आमदनी लगातार आती रहे इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस जाती हुई गर्मी या ये बोले आरंभिक बरसात, इस दौरान हमें पशु का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, टीकाकरण के तौर पर भी, उसके रखरखाव के तौर पर भी, कि हम अच्छे से अच्छा ख्याल रखें ताकि हमारा दुग्ध उत्पादन घटे नहीं और हमारी इनकम सतत बनी रहे।
3: बड़ा अच्छा मेरे को विषय दिया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी करीबन 15 दिन से लेके 20 दिन तक का टाइम मानसून आने का लग रहा है कि अपने पास अभी है, और मानसून आने के 20 दिन के पहले जो बहुत आवश्यक तैयारियां जो हम पशुपालकों को करनी है, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारे जो पशु हैं, जो जहाँ उनके बाड़े में हम उनको रखते हैं, तो उनके बाड़े में जो उनका रहने का स्थान है, जिसको आप लोग चाहे छप्पर से बनाते हो, तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियों से घास फूस से भी बनाते हैं, टीन सेट भी रखते हैं, तो वो जो छप्पर है उसको आप अच्छे से चेक कर लें कि कहीं बारिश का पानी तो उसमें नहीं आएगा। यदि पानी का बारिश आने की जैसी संभावना हो तो छप्पर को सुधार लें और उसकी सफाई वगैरह कर लें, कचरा या कीड़े कांटे या जो भी जहरीला कोई उसमें ना बैठा हो या उसने घर ना बना लिया हो, जिससे आपके आने वाले टाइम पर पशुओं को नुकसान हो सके। दूसरी बात यह है कि पशु का छप्पर ऊपर से तो ठीक है, लेकिन हमारे पशुपालक भाई ये भूल जाते हैं कि जो पशु नीचे जो बैठता है वहाँ पे भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि पानी का भराव एकदम होता है और फिर पशु रात भर बैठ नहीं पाएगा, पशु के घर में पानी भर जाएगा, और इस वजह से पशु जब नहीं बैठेगा तो तमाम बीमारियां उस पर असर करेंगी और उसके बच्चे और दूध देने की जो क्षमता है उसकी एकदम कम हो जाएगी। तो पशु का बैठने का स्थान, मतलब छप्पर के नीचे का स्थान देख लें, यदि मिट्टी डालनी हो तो मिट्टी डाल दें, उसमें गड्ढे हों तो गड्ढों को भर दें, और आसपास कोई कीड़ा कांटा या कोई सफाई जैसा ही बात हो तो उसको जरूर कर लें, क्योंकि गंदगी अगर रहेगी तो कीड़े कांटे पनपते हैं। तो इस तरह से ये सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमारे पशु के रहने की जगह साफ सुथरी हो, आने वाले टाइम पर बरसात में पानी ना आए, और उसके रहने की जो बैठने की जगह है जहाँ रात को पशु सोते हैं वहाँ गड्ढे ना हों, पानी ना भरे। दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि इनके पीने और खाने की क्या व्यवस्था रहेगी आने वाले सीजन, क्योंकि पशु एकदम जाते हैं घरों में बंद हो जाते हैं, अब क्या किया जाए। तो इसलिए पशुपालकों, ज़्यादातर किसान भाइयों ने भूसा का भंडारण कर लिया है और भूसा रख लिया है, कुरुओं में

0: बांधते हैं, कुछ पुरानी पद्धति से बांधते हैं, कुछ ने अपने हिसाब से जो भी है, हमारी गौशाला वालों ने अपने गोदाम भी भर लिए हैं, तो भूसा में पानी ना गिरे। यदि भूसा अगर आपका कच्चा है तो उसमें जरूर देख लें कि पानी ना चला जाए। यदि भूसा में पानी चला गया फंगस लग जाएगी, भूसा का सब खराब हो जाएगा, आपका पशु उसको खा के बीमार हो सकता है। छा भंडारण के जो जगह है उसकी आप देखरेख जरूर कर लें कि कहीं से पानी तो नहीं आएगा। यदि पानी आने की संभावना दिखती है तो पॉलीथीन जरूर रखें। हर पशुपालक अपने घर में एक तिरपाल करीबन 40x20x40 की जरूर रखें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग आप कर पाएंगे। इस तरह से ये दो चीजें मैंने बताई हैं आपके खाने पीने और रहने की। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी अग्रवाल साहब मेरे से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन का टाइम है, बहुत सही बात है। इस समय हमने शिवपुरी जिले में सारे जो हमारी संस्थाएं हैं, पशु पालन विभाग की पशु चिकित्सा संस्थाएं जो हैं, वह भंडारण करा दिया है 3-4 तरह की वैक्सीन का। पहली वैक्सीन जो बहुत आवश्यक होती है बरसा ऋतु से पहले, उसका नाम है गलघोंटू बीमारी की वैक्सीन, HS कहते हैं उसको। दूसरी है VQ, एक टंगिया, पशु एक पांव से लंगड़ा हो जाता है इसलिए उसका नाम एक टंगिया है, इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है, भंडारण सब जगह है। तीसरी वैक्सीन बकरियों के लिए आ चुकी है जिसका नाम है PPR। बकरियों की बीमारी अक्सर बरसात में ये होती है, उसके टीके आ चुके हैं। तो एक गलघोंटू, एक टंगिया और PPR मतलब बकरियों वाली BPR वैक्सीन। तो ये तीनों वैक्सीन हमारे यहाँ सब जगह उपलब्ध हैं, निःशुल्क लगाई जा रही हैं। आप लोग अपने अपने जगह जहाँ आपका गांव है वहाँ से जा करके अपने उसको नाम लिखवाया है, अपना मोबाइल ले आएँ और वहाँ से तारीख ले लें, लेकिन ये 20 जून के पहले कर लें, क्योंकि 20 जून के बाद संभावना ये रहती है कि बारिश तेज आ जाती है, आना जाना आपको भी परेशानी होगी और हमारे जो जाएंगे जो टेक्नीशियन उनको भी परेशानी होगी। तो आप लोग HS गलघोंटू का टीका जरूर लगवाएं। अब ये थोड़ा सा बताऊंगा कि गलघोंटू होता क्या है। देखिए होता क्या है, ये एक बीमारी होती है और बरसात के जैसे ही पहली बरसात होती है और जमीन पर घास आती है और थोड़े थोड़े से डबरों में पानी आ जाता है, उस समय जैसे ही पशु उसको पीता है या उस नई घास को खाता है तो उसके कीटाणु उस घास से उसके पेट में पहुँच जाते और वो जा करके फिर बीमारी फैलाती है एक पशु में, और एक पशु से ये बीमारी दूसरे पशु में, और ऐसे होते होते पूरे क्षेत्र में बीमारी फैल जाती है। रात को पशु लौट के आता है और आते ही उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, रात को उसकी सांस लेने में परेशानी होने लगती है और सुबह आते आते गंभीर अवस्था में आ जाता है और उसकी सांस नली बंद हो जाती है, और अगर उस दिन भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु मर जाता है। बड़ी खराब बीमारी है, इसको नाम है गलघोंटू, गला घोंट देती है। तो इसका नाम मैंने बताया कि HS वैक्सीनेशन इसकी आ चुकी है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, आप लगवा लीजिए। 3 साल से बच्चे से लेकर के जितनी भी उम्र होगी उसको आप लगवा लीजिए, क्योंकि कई पशुपालकों के दिमाग में ये रहता है कि कहीं हमारी प्रेग्नेंट या हमारी गाय 51 है या हमारी बफेलो भैंस 51 है और कहीं इसको वैक्सीन को लगाने से उसका बच्चा तो नहीं फेंक देगी। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्री से वैक्सीन लगवाइए। अभी ये वैक्सीन लग जाएगी फिर आप बेफिक्र होकर सोइए और आपके पशु स्वस्थ रहेंगे गलघोंटू। और दूसरी बीमारी है एक टंगिया, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ये हमेशा छोटे पशुओं पर बीमारी अटैक करती है। जो 3 साल से लेके 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, नए पड़ा पड़िया या बछिया या बछड़ा, तो उनके जो नए खून में ये कीटाणु चला जाता है वही रास्ते से, जैसे बताया कि घास खाने से नई घास या नया पानी में ये आ जाते हैं और ये जा करके शरीर में फैल करके बीमारी फैलाते हैं। और उसमें सुबह जब पशु उठता है तो उसका एक पांव लंगड़ाता है। किसान भाई अक्सर ही सोचते हैं कि किसी वजह से लंगड़ा रहा होगा, तो कुछ करते हैं अपने हिसाब से उपचार वगैरह, लेकिन वो बीमारी होती है उसमें पांव, एक का जांग सूज जाती है, एक पांव सूजता है, और उसमें जाकर से आप दबा के देखोगे तो उसमें से आवाज़ भी आती है, चर चर जैसी आवाज़ आती है, उसमें गैस भर जाती है और वो उसको एक टंगिया बीमारी उसको हो चुकी होती है। फिर इसके बाद में उसका इलाज आप उपचार कराओगे तो बहुत महंगा होता है और परेशानी का कारण बनेगा, इसलिए आप दूसरी वैक्सीन जिसका नाम मैंने बताया एक टंगिया मतलब VQ, उसको आप जरूर लगवा लें, समय पे उपलब्ध है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
1: आपने वैक्सीन का भी बहुत अच्छा बताया कि इन वैक्सीन को अगर हम लगवा लेंगे तो हमारा जानवर सुरक्षित रहेगा आगामी दिनों में। खान पान की अगर बदलाव करें कि जैसे बताया कि कोई जो आपने जिस घास का जिक्र किया था जिसके कारण बीमारी पनप रही है, तो अब पशु पालक को अपने घर पर भोजन कराना है तो उसकी कुछ डाइट प्लान में बदलाव करना पड़ेगा चूंकि बारिश आ गई।
0: हाँ, बहुत सही बात है। देखिए जो दुधारू पशु रहते हैं बरसात के सीजन में, और उनको दुधारू पशुओं के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है कि उनको दाना और उनका हरा चारा और उनकी सानी जो बनाते हैं भूसा की मात्रा में एक मात्रा में मिला करके देते हैं। जैसे कि एक मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ मैं, यदि कोई दुधारू पशु है और यदि वो 4 किलो दूध देता है एक टाइम का, तो दोनों टाइम का अगर अपन मिलाएंगे तो 8 किलो हो जाएगा। तो तो 8

0: दूध देने की क्षमता अगर उसके शरीर में है तो उसको पूर्ण करने के लिए हमको आधा उसको कम से कम 4 किलो दाना देना पड़ेगा, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को। अब दाना मतलब क्या, दाने में 3-4 चीज़ें होती हैं, या तो पीना ले लेते हैं, या सुदाना ले लेती हैं, या चुनी ले लेती हैं, जो भी है मतलब घास के अतिरिक्त उसकी सानी में 2 किलो दाना होना आवश्यक है। तो ये वर्षा ऋतु में आप पहले से ही भंडारण कर लें कि दाना हमारे पास कौन सा है, यदि सुदाना है तो वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बरसात में सुदाना एकदम नहीं मिल पाता है, बाजार भी बंद रहते हैं, प्रॉब्लम हो। चुनी अगर आपके पास है तो उसको भी सुरक्षित रखें। और हरा चारा जो है बरसात में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बरसात के समय में हरा चारे की इन्फेक्टेड रहता है और जनरली मिल भी नहीं पाता है।
1: जिस तरह से मनुष्य के लिए बताया जाता है कि डाइट बदल बदल के लेनी चाहिए, मतलब एक दिन दाल अरहर की हो, एक दिन मूंग की हो, एक दिन सब्जी हो, तो जानवर के लिए भी है कि एक दिन सुदाना हो, एक दिन पीना हो, एक दिन अगर चना हो, एक दिन खली हो, तो ये हो
0: सकता है? ऐसा ऐसा पशुओं के साथ नहीं रहता है, क्योंकि पशु के शरीर की जो आवश्यक मात्रा है वो उसको रोजाना की डाइट में मिल जाती है, और उसके टेस्ट के मामले में जैसे अपन लोग चेंज करके खाते हैं, इस तरह की इच्छा जानवर को नहीं, उसके शरीर की पूर्ति ये 2-3 चीजों से हो जाती है, वो लगातार दे सकते हो, उसमें ऐसा उसको नहीं है कि अगर उसको लगातार दिया तो उसकी कोई उसकी रुचि हो जाएगी, ऐसी समस्या देखने में नहीं आई है।
1: मनुष्य की माफिक बदलाव जरूरत नहीं है, लेकिन डाइट प्रॉपर होनी चाहिए।
0: डाइट प्रॉपर होना चाहिए, उसकी प्रोटीन कितना देना है, उसको कितना दूध के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट देना है, ये सब देना चाहिए।
1: बीमारियों में एक मुंहपका और खुरपका,
0: हाँ,
1: बारिश के दौरान होते हैं?
0: ये बारिश के बाद होते हैं, जैसे ही बारिश जाएगी और चटका पड़ेगा, जब कुंवार का महीना आएगा और उस समय तेज धूप पड़ेगी, उस समय ये रोग शुरू होता है। बारिश में ये मुख्य रूप से 2 बीमारी होती
1: है जिनका आपने जिक्र किया,
0: मैंने जिक्र किया, गलघोंटू और एक टंगिया, इसी का हमको सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
1: अगर बारिश में किसी का जानवर, गाय या भैंस बच्चा देती है,
0: हाँ,
1: 51 मतलब डिलीवरी होती है, तो उसके संग क्या सावधानी नहीं की जाएगी?
0: बहुत अच्छी बात ने आप लोगों के लिए पूछी है। तो देखिए, होता ये है कि जनरली हमारी भैंसें वर्षा ऋतु में ब्याना शुरू कर देती है, और वर्षा ऋतु में जब भैंस ब्याने को होती है तो किसान भाई बहुत परेशान हो जाता है। यदि उसकी भैंस ठीक से ब्या नहीं पाई तो उसको वर्षा ऋतु में सबसे पहले तो चिकित्सक को ढूंढने में दिक्कत आती है, अप्रोच करने में, बाजार जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले 2-3 चीज़ों के हमारे पशुपालक ध्यान रखेंगे। जो गाय भैंस 15 दिन पहले से ये पता लग जाता है कि ये ब्याने वाली है, और ब्याने से पहले 15 दिन के बाद में भी जैसे ही 10 दिन बचते हैं तो उसके शरीर में लक्षण चेंज होने लगते हैं, जैसे मैं कुछ लक्षण बताना चाहूँगा। यदि पशु 3-4 दिन बाद ब्याने वाला हो तो उसका पीछे का हिस्सा भारीपन देखने लग जाता है, उसका जो ब्याने की स्थिति में जो उसका योनि मार्ग होता है वो काफ़ी सूजन जैसी स्थिति में आ जाता है, और दूध थन उसके दूधों में भरना शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है? 10 दिन पहले से। और धीरे धीरे जैसी ये स्थिति आगे आगे बढ़ती जाती है, और जैसे ही 3 दिन बचते हैं ब्याने के, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 72 घंटे की नियर अबाउट, तो पशु के जो पीछे की जो 2 हड्डियाँ होती हैं जो पूंछ के आसपास रहती हैं, वो उनकी गैप, उनमें गैप बन जाता है, उनमें जगह दिखने लगती है, और इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये अब पशु ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में ब्या जाएगा। तीसरी बात जो आएगी वो ये आएगी कि उसके योनि मार्ग से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, ये 72 घंटे। और जैसे ही 1 दिन बचता है तो पशु फिर अनइजीनेस में, उसको अच्छा नहीं लगता है, बैठता है, उठता है, इधर उधर देखता है, और अपने पैरों को जमीन पर भी रगड़ता है कई बार, क्योंकि वो तैयारी करता है ब्याने की। ये सब चीज़ें अगर आपको दिखने लग गई तो ये पता पक्का हो गया कि ये पशु ब्याने वाला है। अब उस स्थिति में आपके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर रहते हैं, आप ज़रूर बता दें कि ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया है, और आप मौके पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रहें, और उस समय उसको जरूर बुला लें जब वो ब्याने वाली तैयारी हो या ब्याने की शुरुआत हो चुकी हो। चलो ये मैंने मान लिया कि किसी वजह से कोई ना बताए, और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पशु ब्याना शुरू हो गया, अब आप बरसा ऋतु में क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर सूखा हो, पानी बिल्कुल नहीं हो, और आपके जहाँ पर उसको ले जा रहे हो वहाँ पर कुछ बोरियाँ पुरानी जिसमें कोई गीलापन ना हो, सूखी हो, पुराने कुछ कपड़े अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा, ये सब रख लें, और उसमें उसको जैसे ही बच्चा आता है तो उसको कपड़े के आसपास से पूंछ उसको रख के पूंछ के उसको और उसके पशु के आगे चाटने के लिए दे दें। तो पशु और उसका बच्चा जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ वहीं से आना बंद हो जाती हैं, पशु उसको चाट चाट के अपने हिसाब से प्राकृतिक रूप से ठीक कर लेते हैं, और इस तरह से एक बात। दूसरी बात, इस सब होने के बाद में फिर से पशु चिकित्सक बताना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी सावधानियां होती हैं। जैसे पहली ये होगी कि बच्चे का जो नेवल होता है, अक्सर हमारे किसान लोग बताते हैं साहब उसके नला सूज गया, उसमें से जो है पस आने लगी, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि उस समय जो बच्चा पैदा होता है उसका नाल को वो डोरे से नहीं बांधते हैं, या बांधते भी हैं तो गंदे डोरे से बांधते, तो उसको नाल को एक साफ धागे से, अगर गंदा है तो धो लें साबुन से और उसको बांध लें, उसके 3-4 गांठ लगा दें, और इसके बाद वो नीचे कैसा सूख के अपने आप गिर जाए। और टिंचर आयोडीन एक दवा आती है, वो जरूर लगाते रहें, दो तीन

0: आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है, मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी।
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए
1: जी।
0: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो
1: जी, जी।
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र
2: फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच विमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज 3 करोड़ प्लस विमेन लेड SMEs are contributing to the country's progress and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream?

0: majority, at least 40% of these accounts are with women, and around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman has been given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Samriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the JAM Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, Pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers, and then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in, and you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonu.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी, और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन, उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वॉज प्रिकेरियस. इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफकोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहाँ से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर,
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring.

0: till March 2026,
1: Yes.
0: more than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
1: yes.
0: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi ji, so maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% se badhkar 90% se adhik ho gayi hai ji.
1: 98
0: bilkul 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी.
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी.
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जिस गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
0: yes.
1: which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when
1: yes.
0: women are healthier, and when you know they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
1: yeah,
0: due to the
1: yeah.
0: Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
0: Yes.
1: You can see the women have dreams about their children now,
0: mm-hmm.
1: and especially the daughters.
0: Mm-hmm.
1: I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Aur
1: Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है, मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है. जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ. क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
2: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
0: जी, जी।
2: अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
0: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी?
1: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटर स्किल्स बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो।
0: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट हुई है जो की 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
1: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
0: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए, वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है।

0: कितने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
2: थैंक यू।
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhla ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आंधी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत मौसम फिल्म से लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की, संगीत मदन मोहन का।

आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है ये। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड

निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ता

0: कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन

0: नायडू ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Nabonno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हममनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुतालिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है।

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जम्हूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। एक देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरबा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें खेलें आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमेरिकी फोर्सेस ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमेरिका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائلز داغے. تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جسے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایران

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी

0: के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही है। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आज़ादी की आवाज़ को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था। तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई, यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के, उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे मैंने कहा नहीं, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने जी उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बात पूछे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने, मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं, तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और भी जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं, जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त थी।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है, मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ के साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब

0: आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए। बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग से उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है कि मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उससे कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाए, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, जो नहीं चल सकता है, उसको चलने मदद नहीं मिल रही है और लोग उससे मदद लेकर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी

0: नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
1: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर। सर
2: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
1: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
2: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
1: जी,
2: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
1: जी,
2: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
2: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
2: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
2: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो

0: शोध कार्य संपन्न होते हैं उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेषकर कि इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जैसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया।

मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन.
1: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े.
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई. इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा. इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया. उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ.
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है. गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है. वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है.
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग. बियॉन्ड हिज वोकल प्रोविस, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशे प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर. ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ रा

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गंगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गंगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our time.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने